You are my love, my angle. Don't treat me like potato. Answer my DM. सबसे पहले तो मेरा नाम रोसी नहीं है, रोशी है. दूसरा, आई एम नॉट योर एंगल, आई डोंट इवन वॉन्ट टू बी योर एंजल. तीसरा, आई एम नॉट ट्रीटिंग यू लाइक अ पोटैटो, क्योंकि मुझे पोटैटोस पसंद हैं. अगर मैं तुम्हें सच में पोटैटो की तरह ट्रीट कर रही होती, लवर बॉय अंडरस्कोर, तो अभी तक मैं तुम्हें फ्रेंच फ्राइज बनाकर खा चुकी होती. मे बी हाउएवर, अगर आप अपने DMs का इनपुट थोड़ा सा बेटर कर लें तो हम शायद एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको भी यही लगता है दैट आई एम योर एंगल एंड आई एम ट्रीटिंग यू लाइक अ पोटैटो, वाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर, मे बी आई बी टेम्पटेड टू कॉल यू. मेरा नाम है नॉट रोसी, ROCHIE aka रोशी. फाइंड मी ऑन योर सोशल्स एंड वाइल यू डू दैट आई प्रॉमिस आई विल नॉट ट्रीट यू लाइक अ पोटैटो. एंड कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जब आपके मम्मी पापा बाहर सिर्फ दो दिन के लिए चले जाते हैं कि उन्हें ऐसे किसी पिलग्रिमेज पे जाना है, उन दो दिन आप अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेते हो एंड द टू ऑफ यू बिहेव लाइक यू आर अ मैरिड कपल. कितने मजे आते हैं ना घर घर खेलने में आपको. लेकिन
2: द सीक्रेट बॉक्स,
1: किसी को आपके इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता है. एंड इफ यू वांट टू मेक अ कन्फेशन लाइक दैट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. आई बी हैप्पी टू हियर योर कन्फेशन एंड नॉट ओनली दैट, आई बी हैप्पी टू रोशिफाई यू. ऑन दैट नोट, मेरे साथ हैं लाइन पर मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू मिस्ट्री कॉलर?
3: आई एम ओके.
1: ओके,
3: आई हैव बीन ट्राइंग टू बी ओके, पर मैं आई गेस आई नीड रोशिफिकेशन.
1: और वैसे भी मैं तो उन लोगों की जिनकी आवाज इतनी हॉट होती है उनको तो वैसे ही मैं फ्री फंड में रोशिफाई भी कर देती हूँ और एक रोशी मोशी किस भी दे देती हूँ. सो आई बी हैप्पी टू गिव यू बोथ.
3: अपने हॉटनेस पे तो अब हमें शक होने लगा है, तो इस बारे में हम ना ही बात करें तो अच्छा है.
1: क्यों, क्या हो गया?
3: मेरे को एक कन्फेशन करना है रोशी, और ये बात मैं अपने दोस्तों से भी नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा बहुत मजाक बनाएंगे. तो बात ऐसी है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी बहुत सालों से और जिसे मैं बहुत प्यार करता था. तो मैंने सोचा था कि हम तो शादीवादी कर लेंगे, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, फैमिली आगे होगी. पर कहानी में एक बड़ा भारी ट्विस्ट आ गया जिस वजह से आगे बात नहीं बन पाई. पहले से भी ना जब हम लोग बाहर जाते थे तो मुझे लगता था कि शी वाज नॉट ऑल देयर, लाइक शी वाज चेकिंग समवन एल्स आउट ये वो. बट ऐसे कोई होता भी नहीं था ज्यादा ऐसे लड़के वड़के, तो मेरे समझ में नहीं आता था कि क्या दिक्कत है. फिर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया रिसेंटली और मुझे कुछ एज सच रीजन भी नहीं बताया कोई सॉलिड. तो मैं काफी परेशान था, बट अब क्या करें, अब बोल दिया है किसी को नहीं रहना रिलेशनशिप में तो क्या कर सकते हैं. लेकिन अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, वो भी एक लड़की से.
1: आई एम सो सॉरी डूड.
3: तो बेसिकली शी लेफ्ट मी फॉर अ गर्ल. तो अब आपको मतलब पता चल रहा होगा कि क्यों मुझे अपनी हॉटनेस पे शक हो रहा है.
1: इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. मैं आपको बताना चाहती हूँ मिस्टर कॉलर, दैट ऐसा हो सकता है दैट द पुअर थिंग जस्ट लाइक यू नो वाज प्रॉब्ली स्विंगिंग बोथ वेज एंड शी रियलाइज दैट स्विंग करते करते वो शी वियर्स टूवर्ड्स विमेन. यार आई एम श्योर यू आर, आपकी आवाज इतनी हॉट है, आप खुद इतने हॉट हो. आई एम श्योर दैट लाइक अ बेटर मोर ऑसम गर्ल इज वेटिंग टू लव यू.
3: देखिए अब तो रोशी बहुत सेल्फ डाउट होने लगा है.
1: नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू गो एंड बी लाइक योर एक्स गर्लफ्रेंड. आप भी दोनों जेंडर्स ट्राई करके देखिए, हो सकता है यू माइट एक्चुअली बी अट्रैक्टेड टू गाइस, हु नोस, है ना.
3: एडवाइस बुरी नहीं है बट आई डोंट थिंक ये मेरे लिए पॉसिबल है.
1: तो मैं काम कर सकती हूँ, सी एट द मोमेंट मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ और एक रोशी मोशी किस दे सकती हूँ. मे बी दैट मेक यू फील बेटर.
3: आई थिंक दैट वुड बी वेरी नाइस. ओके सो
1: है ना, तो पहले तो आप ये ले लो.
4: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: और फिर आप ये ले लो.
3: थैंक यू सो मच रोशी.
1: आई होप यू फील बेटर.
3: आई ऑलरेडी डू स्लाइटली.
1: आई एम ग्लैड दैट यू डू एंड योर कन्फेशन इज रियली टेरिबल एंड आई होप कि ये किसी के साथ ना हो. इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्टी कॉलर की तरह आपके साथ ऐसा हुआ है, मैं उसके सामने तो नहीं हंसी थी बट इट इज काइंड ऑफ टेरिबल टू हैपन, प्लीज हिट मी अप विद योर कन्फेशन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. फाइंड मी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, बट व्हाटएवर यू डू कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी

0: कालीन अबा चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जितना दिन तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज वॉट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज, Only on Mirchi, it's hot.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
3: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 Oak Tree Road, Izzylin, न्यू जर्सी।
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

Calm down, my bhagjano. Aaj main aapko batane wali hoon that if you are truly interested in a guy after the first date, then usse contact nahi karna. That is right, you heard me. Usse contact nahi karna. This is probably the oldest trick in the book, lekin surprisingly, it works pretty much almost every time. Ye trick mujhe mere ex ne sikhai hai. Jab aap chahte ho ki koi aapka peecha kare in a relationship, to unhe chance do aapko chase karne ka, no matter how much you like them. मान लीजिए फर्स्ट डेट आपके हिसाब से 100/100 है, यू आर एक्साइटेड, यू वांट टू गो इनटू द सेकंड डेट, लेकिन डोंट टेक्स्ट द गाय फर्स्ट, वेट फॉर हिम टू टेक्स्ट यू बैक. और अगर वो ट्रूली इंटरेस्टेड है और उसे भी लगता है ये 100/100 है, देन लेट हिम टेक्स्ट यू, लेट हिम आस्क यू कि तू अगली बार कब फ्री है, लेट मी टेक यू आउट अगेन. द ट्रिक इज द मोर यू लाइक हिम इनिशियली, द मोर रिस्ट्रेंट यू शुड शो.

इसने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अब हमारा ब्रेकअप हो गया तो मार क्यों नहीं रहा है, जिए क्यों जा रहा है, ये इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, आई कांट बिलीव इट। कैन यू इमेजिन कि इसने हर उस बंदी को फॉलो करना शुरू कर दिया है जिसे देखकर मुझे इरिटेशन होती थी। पूरी सोसाइटी में जितनी लड़कियां, उनकी बहनें, उनकी कजिन्स, उनकी मासियां और चाचियां सबको फॉलो करता है। व्हाई इज ही स्टिल लिविंग? मेरी बेस्टी के एक्स को गलती से उसने स्टॉक कर दिया और इस बात को हो गए दिन दो। दो दिन से मैं सिर्फ ये रैंट सुनती जा रही हूँ कि मेरा जो एक्स है, जिसको बाय द वे मेरी बेस्टी ने खुद डम किया था स्वयं अपने हाथों से, शी नाउ हैज अ प्रॉब्लम कि उसने इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर दिया। हमारा 3 महीने का रिलेशनशिप था, कम से कम 1 साल तो सिंगल रहा था। ऑलरेडी आई हैव हर्ड दैट वो किसी और को डेट कर रहा है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? उसे शर्म नहीं आती है। ऑल द टाइम ही सेड ही लव्ड मी, ही वाज जस्ट लाइंग। तो आई कांट बेसिकली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब हम किसी को डंप कर देते हैं, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मूव ऑन कर लें, सब कुछ हमारे साथ बिल्कुल सही सही हो, लेकिन उस बंदे की जिंदगी भर बीटी होती रहे, जिंदगी भर, ताकि जब वो शादी भी करे तो उसकी बीवी दुनिया की सबसे खराब बीवी हो, उसके बच्चे उसे जिंदगी भर बीटी देते रहे, इनफैक्ट उसे जिंदगी इतना परेशान करे कि द ओनली प्लेस वेर ही गोज एंड फील्स लाइक हिमसेल्फ इज अस। इवन दो हम उसका फोन कभी नहीं उठाएंगे, मैसेज का जवाब कभी नहीं देंगे, पर यही तो विधि का विधान होना चाहिए ना। अगर आपको भी ऐसे लगता है दैट योर एक्स हैज मूव्ड ऑन वे टू क्विकली फॉर योर लाइकिंग, व्हाई डोंट यू हिट मी अप? जैसे मैं अपनी बेस्टी का रोना सुन रही हूँ, आपका भी सुन लूंगी। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, हिट मी अप, डू व्हाट यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: ओह नो,
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपकी टुगेदरनेस में नॉटीनेस है लेकिन रोमांस नहीं है. हु वांट्स दैट काइंड ऑफ टुगेदरनेस एनीवे, बट दैट काइंड ऑफ टुगेदरनेस इज कॉल्ड फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. और अगर आपके पास एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स स्टोरी है, बिकॉज दैट इज अ स्टोरी जो आपकी खत्म ही नहीं होती ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, प्लीज शेयर योर स्टोरी विद मी लाइक विक्रांत डिड एंड आईड लव टू टॉक टू यू अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB एंड राइट नाउ विद मी ऑन द लाइन इज विक्कू बेबी. हाय विक्कू.
2: हाय रोशी.
1: मैं आपको विक्कू बुला सकती हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उससे?
2: नहीं मैम, इट्स विल बी फाइन.
1: मैम मत बोलो यार ऐसे, फिर आपके बीच में ना मुझे ऐसा लगता है आपके और मेरे बीच में बहुत दूरी आ गई है.
2: नहीं वो तो कभी नहीं हो सकता. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से आपको ट्राई कर रहा था, आपने देखा भी होगा मैसेज किए जा रहा हूँ, बट मैं सोच रहा था कभी नंबर लगेगा मेरा.
1: देखो अब नंबर लग गया, मतलब बहुत टाइम लगता है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं धीरे धीरे सबको फोन करती हूँ, बट अल्टीमेटली करती जरूर हूँ. और आपको तो मैंने अच्छे टाइम पे पकड़ा यार, हम आपकी फ्रेंड्स विद बेनिफिट स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं. लाइक डूड
2: या
1: तो बड़े शेरों की तरह बोल रहे हो. आपकी स्टोरी है क्या वैसे?
2: एक्चुअली स्टोरी ऐसी थी कि वी यूज्ड टू स्टे एट माय फ्रेंड्स होम और उसकी सिस्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा फेक रहा हूँ, बट शी इज मतलब मेरे से 7 या 8 साल बड़ी. मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था वो टाइम पे.
1: नेचुरली
2: एक बार ऐसा ही हुआ कि मतलब कोई नहीं था, हम दोनों ही थे. शी डायरेक्टली आस्क मी अबाउट दैट
1: कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनेगा.
2: हाँ तो वो एक बार हुआ, फिर उसके बाद जैसे जैसे भी चांस मिलते गए, फिर वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स 2, 3, 4 टाइम्स बहुत बार ऐसा हुआ.
1: तो ये कितना टाइम चला या अभी भी चल रहा है?
2: नहीं नहीं वो कैसा, वो थोड़ा एक मतलब मैच्योरिटी लेवल का था. मतलब ऐसा रोना धोना नहीं, मैं तुम मुझे छोड़ जाओ तो
1: एग्जैक्टली
2: वैसा नहीं था. मतलब मैच्योरिटी था कि हाँ बस
1: मुझे ऐसा लगता है बंदे और बंदियों में से बंदियां ज्यादा मच्योर होती हैं और बंदे एक्चुअली ज्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है. एंड द फैक्ट दैट यू टुक इट सो नाइसली, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक एज वेल. थैंक यू लव, इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू.
2: थैंक यू. एंड वन मोर थिंग
1: बोलो ना जान.
2: आई यूज्ड टू ऑलवेज सॉ योर रील्स जहाँ जहाँ भी मुझे मतलब चांस मिले. इवन I got to see you on YouTube, तो मैं तब भी आपका जो भी कितना भी मतलब 30 सेकंड 40 सेकंड वाला रोल क्यों ना हो, मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं रुक जाता हूँ.
1: तू जान है यार, जान ले लेगा क्या मेरी, ये एक रोशी मोशी स्वीट सी किसी ले ले. It was really nice talking to you. I hope you meet the love of your life really, really soon.
2: Thanks, thanks, Roshan.
1: ठीक है, वो story भी share करेंगे फिर.
2: Yeah, definitely.
1: Okay, मेरी जान, it was so nice talking to you. और अगर ऐसे ही विक्रांत की तरह आपके पास भी एक story है that you want to share with me, morning glory है, then hit me up on Insta या FB. I'll be happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, as you must have figured. नाम की spelling ROCHIE. You can find me on Instagram. You can even find me on Facebook. तो जल्दी से खरो जो आपको खरना है, but कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी

0: ये लेजिट एक जेंडर प्रॉब्लम है। जब भी एक बंदी अपने बंदे के सामने ऐसे अपनी जिंदगी का रोना रो रही होती है कि भाई ये हो गया वो हो गया, मेरा बॉस इस तरह का इंसान है, मेरी बेस्टी मेरे एक्स बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई, जो भी, गाइज नेसेसरली फील द नीड टू लाइक गिव सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम कि तू एक काम कर, अपने बॉस को ये मेल लिख दे, अपनी बेस्टी को ऐसी चिट्ठी लिख दे। आई एम लाइक भाई मेरा भी दिमाग चलता है, आई कैन ऑल्सो डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मुझे तुझसे सॉल्यूशंस नहीं चाहिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू से यू आर स्मार्टर देन आई एम, मुझे तुझसे सपोर्ट और एम्पथी और इफ नीड बी सिंपथी चाहिए कि हाँ यार रोशी तेरे साथ बिल्कुल खराब हुआ है, तेरा बॉस उसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तेरी बेस्टी उसे तो किसी और डायमेंशन में भेज देना चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ सपोर्ट वी आर लुकिंग फॉर। सो इफ यू आर अ गाय एंड इन अ रिलेशनशिप, और इवन इफ यू आर अ गाय एंड योर बेस्टी इज अ गर्ल जो जिंदगी का पूरा रोना आपको संक्षिप्त में सुना रही है, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए प्लीज, दैट्स जस्ट इरिटेटिंग AF। हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए इन यू टेलिंग अस कि ये रही तलवार और जा कर दे खून और देखी जाएगी बाद में। डोंट एक्चुअली डू दैट, ओके, दैट्स नोबडी वांट्स टू गो टू जेल। दैट सैड, अगर आपको भी ऐसा ही लगता है और अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हैं आप, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, वी विल कंपेयर नोट्स एंड जूसी स्टोरीज। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम और फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम न

छड़ी न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey. It's hot.
1: आपका दिमाग ही ऐसा है कि जब मैं आपको कहूंगी ड्राई ट्रिपिंग, यू आर गोइंग टू थिंक इट्स अनदर रियली किंकी थिंग, बट इट इज नॉट. ये एक नया वेकेशनिंग ट्रेंड है विच माई बेस्टी हैज कम्प्लीटली बॉट इनटू. सो इसका मतलब एज द नेम सजेस्ट इज वेरी क्लियर. ड्राई ट्रिपिंग यानी कि आप पूरे वेकेशन पर जा रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, यू आर हैविंग द टाइम ऑफ योर लाइफ, लेकिन आप ये सब कर रहे हो विदाउट गेटिंग टल्ली. यू हर्ड मी राइट. इसका मतलब ही है कि आप सनराइज एंजॉय करो, सनसेट एंजॉय करो, जितना आप खाना खा रहे हो उसका टेस्ट एंजॉय करो विदाउट गेटिंग सो कैरीड अवे and drunk at night ki agle din you are mostly hungover and by the time you end up feeling better it's time to get drunk again. Is dry tripping wale trend ki vacationing mein aisa nahi hota hai. You are sober through it all, you remember what happened, so you end up actually not even hooking up with rando people, you end up meeting some interesting people and it could be a very long lasting love affair. Aur agar aapko bhi ye dry tripping wala vacationing idea bahut hot lag raha hai, why don't you tell me your idea of it insta par ya fb par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai rochie. So find me on the gram or facebook and whatever you do, kahin mat jana jana kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जब आपके मम्मी पापा बाहर सिर्फ दो दिन के लिए चले जाते हैं कि उन्हें ऐसे किसी पिलग्रिमेज पे जाना है, उन दो दिन आप अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला लेते हो एंड द टू ऑफ यू बिहेव लाइक यू आर अ मैरिड कपल. कितने मजे आते हैं ना घर घर खेलने में आपको. लेकिन
2: द सीक्रेट बॉक्स,
1: किसी को आपके इस सीक्रेट के बारे में नहीं पता. एंड इफ यू वांट टू मेक अ कन्फेशन लाइक दैट, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. आई बी हैप्पी टू हियर योर कन्फेशन एंड नॉट ओनली दैट, आई बी हैप्पी टू रोशिफाई यू. ऑन दैट नोट, मेरे साथ हैं लाइन पर मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू मिस्ट्री कॉलर?
3: आई एम ओके.
1: ओके,
3: आई हैव बीन ट्राइंग टू बी ओके, पर मैं I guess I need roshification.
1: और वैसे भी मैं तो उन लोगों की जिनकी आवाज इतनी हॉट होती है उनको तो वैसे ही मैं फ्री फंड में रोशिफाई भी कर देती हूँ और एक रोशी मोशी किस भी दे देती हूँ. सो आई बी हैप्पी टू गिव यू बोथ.
3: अपने हॉटनेस पे तो अब हमें शक होने लगा है, तो इस बारे में हम ना ही बात करें तो अच्छा है.
1: क्यों, क्या हो गया?

0: मेरे को एक कन्फेशन करना है रशी, और ये बात मैं अपने दोस्तों से भी नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तो बात ऐसी है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी बहुत सालों से और जिसे मैं बहुत प्यार करता था, तो मैंने सोचा था कि हम तो शादीवादी कर लेंगे, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, फैमिली आगे होगी। पर कहानी में एक बड़ा भारी ट्विस्ट आ गया जिस वजह से आगे बात नहीं बन पाई।
1: क्या हुआ?
0: पहले से भी ना जब

0: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा, पता नहीं है, बट

0: बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू के हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot।

फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, अंग्रेजी में एक कहावत है कि आपने जो भी रोमांस की किताबों में पढ़ा होगा आपकी असली जिंदगी में उससे भी ज्यादा भयंकर और घोर घटनाएं घट रही होंगी, विच इज एक्चुअली ट्रू. सो वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, उसकी जो बहन है उसकी बहन को अपनी पड़ोस वाली आंटी के बेटे से प्यार हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती है. तो अब बहन ने डिसाइड किया कि माँ बाप तो मानेंगे नहीं, और क्योंकि लड़का US में शिफ्ट हो रहा है, उसको ग्रीन कार्ड सब मिल गया है, हम दोनों भाग के US में शादी कर लेंगे. सो 3 रातों पहले उसने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करा ली, वीज़ा वूज़ा सब मिल गया, ये दोनों एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी लाइव लोकेशन ऑन रखी थी फैमिली ग्रुप में, स्टूपिड गर्ल. उसके बड़े भाई ने ये पता लगा लिया कि वो कहाँ है, एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, दे स्मेल्ट अ रैट. उसको पकड़ा एयरपोर्ट के बाहर, उससे पूछा कि भाई तू कहाँ जा रही है. उसके बॉयफ्रेंड ने बोला, बेचारे गरीब ने, कि हमारा प्लान था कि हम भाग के अमेरिका में शादी कर देंगे. जो पिटाई हुई है ना उस बेचारे की, इस बंदी के भाई के हाथों से,

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in.
3: बॉलीवुड को समझना है तो एक बात मान लीजिए, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस फिल्म को इंडस्ट्री सेफ समझती है, ऑडियंस उसे इग्नोर कर देती है, और जिस फिल्म को देखकर पहला रिएक्शन आता है कि भाई ये क्या बनाई है, कभी कभी वही थिएटर्स में हंगामा कर देती है। Whether it's a Dhurandhar 2, Awarapan 2, Toxic या फिर हैवान, and then of course you got the Dhamals, the Cocktails and the Welcome to the Jungles. मतलब audience एक अजीब सी demand कर रही है, surprise भी चाहिए और entertainment भी चाहिए, बस एक चीज नहीं चाहिए, predictability. शायद Bollywood की सबसे interesting बात आज यही है। इंडस्ट्री फ्यूचर की तरफ भाग रही है, लेकिन ऑडियंस कभी कभी उसे पास्ट की तरफ खींच लाती है। जैसे आज शान की आवाज, सैफ अली खान लगभग 2 दशक बाद, और हैवान से ही इस बार का काउंटडाउन होता है किक स्टार्ट। दिस इज गाना नंबर 20, मेरे हीरो है वो।
4: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
5: लिख रहे हो ना?
4: तुम भी गाओ।

जब कोई गाना खत्म होता है हम तुरंत उस टाइम पर कुछ बोलते नहीं, बस 2-3 सेकंड्स की वो खामोशी होती है। ना लिरिक्स की कोई एक लाइन दिमाग में अटकी होती है, ना म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पीस, बस आवाज अंदर कहीं रुक गई होती है। तो फिर आओ, मेरे लिए उन्हीं गानों में से एक है। और शायद म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, हर कनेक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसलिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, म्यूजिक हटाने वाला हूं, प्रोडक्शन हटाने वाला हूं, सिर्फ आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं।

बस अभी जो सुना उसमें अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी आवाज पहचान में आ जाती है। आवाज है अरमान मलिक की। एक वक्त था जब रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बॉलीवुड की सबसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल यंग आवाजों में अरमान का नाम आता था, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपनी अलग दुनिया बनाई। और शायद इसलिए नंबर 18 पर आता हुआ ये ब्रांड न्यू गाना सिर्फ एक नई एंट्री नहीं लगती, कभी कभी कमबैक अनाउंसमेंट से नहीं होता, बस आवाज दोबारा सुनाई देती है। और आप खुद समझ जाते हैं, प्रेम कीटाणु से अरमान मलिक इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड कहो तो, एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 18।

0: कैप्टन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 17.

मदहोश नाम ही ऐसा है कि वॉल्यूम बढ़ाने से पहले ही दुनिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है और ये एक कॉम्प्लीमेंट है और यही कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे सिंगर्स को भी दिया जा सकता है और वैसे ही एक सिंगर है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, नाम है मोहम्मद इरफान। यार इरफान की आवाज में हमेशा से एक अजीब क्वालिटी थी, वो आवाज आपको इम्प्रेस करने नहीं आती थी, वो सीधा मूड बदल देती थी। फिर मोहब्बत याद है आपको, कितनी बातें की हैं मैंने इस गाने की इस शो पर। सॉन्ग वो संग बाय थ्री सिंगर्स, अरिजीत सिंह, साइम भट्ट एंड मोहम्मद इरफान। तीन आवाजें एक गाना, अरिजीत एक दास्तान बन गए। इरफान की आवाज दास्तान बनने से पहले ही जैसे खामोश हो गई, लेकिन आवाज कहीं नहीं गई।

कुछ होता है यार दिल में, क्या आवाज है, और शायद दर्द यही है। कभी कभी टैलेंट का खत्म होना प्रॉब्लम नहीं होता, बस उसके पास पहुंचने वाले वो मौके खत्म हो जाते हैं। इस हफ्ते धमाल 4 का कहर संग बाय गुरु रंधावा नंबर 16 पर है। लेकिन क्योंकि हम इरफान की बातें कर रहे थे, कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो बस आप ही का एक पुराना वर्जन वापस ले आते हैं। इरफान

0: के लिए वो वक्त था एक विलन का। मिथुन ने तुम ही हो के बाद एक नई आवाज को चुना और बंजारा में मोहम्मद इरफान वो आवाज बन गए। दिस सॉन्ग फ्रॉम एक विलन इज माई रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number

0: कुछ फ्रेंचाइजेस को रीबूट करने की जरूरत होती है और कुछ को अपना असली चेहरा याद दिलाने की। There's a film called Race, जिसे आप नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला, लेकिन रेस शायद उस दूसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि पहली दो फिल्म्स में गाड़ियां तेज थी, लोग उससे भी ज्यादा तेज थे, लेकिन असली मजा स्पीड का नहीं था, मजा था इंफॉर्मेशन का। आपको कुछ पता है और कैरेक्टर को कुछ और ही पता है, और हर 10 मिनट में फिल्म आपको सडनली बताती थी कि जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत था। एंड देन आई सलमान खान की रेस 3। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन या कास्टिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो कहीं रास्ते में ही छूट गया, एंड दैट वाज ऑडियंस को डाउट में रखना। अब रेस 4 की बात हो रही है, रीबूट की बात हो रही है, और कास्टिंग पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। देयर कुड बी आमिर खान, देयर कुड बी टाइगर श्रॉफ, देयर कुड बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, विच ऑल्सो मीन्स कि स्केल हो सकता है, एक्शन हो सकता है, बड़े स्टार्स हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी एक ही है, क्या ये रेस होगी या रेस के नाम से एक और एक्शन फिल्म होगी? क्योंकि रेस का मैजिक तभी वापस आएगा जब फिल्म खत्म होने के बाद आप भी सोचेंगे कौन किस पर भारी पड़ा। वेल, लेट मी लीव यू विद दैट थॉट एंड ऑल्सो लीव यू विद माई स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, विच हैपेंस टू बी फ्रॉम द फिल्म दैट वी टॉकिंग अबाउट, बेनी दयाल और शालमली खोलगड़े की आवाज में। दिस इज लत लग गई,
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

महीनों से जिस गाने ने इस काउंटडाउन पर अपना बसेरा बनाया हुआ था, आज उसके सामने वक्त ने एक बार फिर एक नया फैसला लिखा है। कहरा हुआ इज ऑन नंबर टू, लेकिन नंबर वन की कहानी सिर्फ एक चार्ट पोजीशन की नहीं है यार, एक पुराना गाना वापस आता है और हमें लगता है कि हम गाना सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी पुरानी जिंदगी सुन रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता उन्हीं गानों में से 19 साल पहले पहली बार सुना था, लेकिन फिर हम बदले, शहर बदले, लोग बदले, जिंदगी ने अपना साउंड ट्रैक बदला, लेकिन वो धुन कहीं नहीं गई। और जब आवारापन टू ने उसे दोबारा हमारे सामने रखा तो हमने सिर्फ एक पुराना गाना नहीं सुना, हमने देखा कि उस गाने के अंदर हमारा कौन सा वर्जन अभी भी दबा हुआ था, अभी भी जिंदा था। तेरा मेरा रिश्ता ने आवारापन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं दिया, उसने फिल्म को एक मेमोरी दी है। और आज वही मेमोरी महीनों पुराने नंबर वन सॉन्ग गहरा हुआ को उसकी जगह से उतार रहा है। इस हफ्ते का नंबर वन सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता। कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस हम उनमें खुद का एक नया हिस्सा ढूंढ लेते हैं।

0: कुछ गाने हम चूज करते हैं और कुछ गाने पता नहीं कब हमें चूज कर लेते हैं, फिर वो किसी सफर का हिस्सा बन जाते हैं, किसी याद का, किसी ऐसे वक्त का जिसे हम दोबारा जीना भी नहीं चाहते और पूरी तरह भूलना भी नहीं चाहते। शायद इसलिए हम हर हफ्ते यहां लौटते हैं। That's it for this episode of the Mirchi Top 20. Until the next time we meet, this is Suren, over and out. Mirchi
1: Top 20. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. Zuba.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

सोचो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम्हारा एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हाँ, उसमें तुमने अपनी यू नो तन मन धन सब लगा दिया हो, एंड देन देयर इज अ प्रोजेक्ट जो तुमने ऐसे ही साइड में कर लिया, टाइम पास के लिए कर लिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो तुम्हारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट फेल हो गया और जिसको तुम टाइम पास समझ रहे थे वो हिट हो गया। सो एक्चुअली में ऐसा हुआ था बच्चन साहब के साथ। कौन सी फिल्म थी वो अभी बताऊंगी आपको, जो उन्होंने ऐसे टाइम पास सोच करके कर दी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार, क्योंकि अब स्टूडियो में आ गई है आपकी प्यारी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, लेकिन इस जमाने की श्रेया के साथ। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आपो श्रेया के साथ। और आज ना एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जो बच्चन साहब की ऐसी टाइम पास फिल्म थी। इस फिल्म को उन्होंने रोज एक घंटे सुबह बस इतना ही टाइम दिया था एंड ही थॉट कि ये फिल्म कुछ खास करने नहीं वाली है। Meanwhile, he was shooting for a very, very ambitious picture. वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई लेकिन ये पिक्चर हिट हो गई। हाँ जी, तो ये हुआ था फिल्म याराना के साथ। तो होता ये है कि इस फिल्म के लिए ना भाई, जब राकेश कुमार who was the director of the film, वो बच्चन साहब के पास आए, बच्चन साहब ने उन्हें साफ मना कर दिया कि उनके पास डेट्स ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उन डेट्स पे सिलसिला मूवी को शूट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब वो बच्चन राकेश कुमार बच्चन साहब के सेट के और स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे तो एक दिन उनको टेबल पे बच्चन साहब की अपॉइंटमेंट डायरी दिख गई। उस डायरी में उन्होंने देखा कि सुबह 8 बजे के पहले बच्चन साहब फ्री हैं। अब उन्होंने कहा भाई ये डेट्स तो अवेलेबल नहीं है लेकिन सुबह 8 बजे का टाइम तो हर डेट पे अवेलेबल है। तो वो बच्चन साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि बस आप इतना कर दीजिए कि रोज सुबह 7 से 8 ओनली 1 आवर एवरी डे इतना मेरी फिल्म याराना को दे दो। बच्चन साहब को भी लगा कि 1 घंटे में क्या हो जाएगा, चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, मैं थोड़ा और जल्दी सुबह उठ जाऊँगा। बच्चन साहब ने वो 1 घंटा दिया। याराना पूरी पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ इस 1 घंटे में शूट हुई थी, 7 to 8 AM इन द मॉर्निंग। और जब सिलसिला और याराना रिलीज हुई, सिलसिला में जहाँ पे उन्होंने बहुत ढेर सारा काम भी किया था, वेल एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई थी ये पिक्चर याराना। इसकी बड़ी सारी बातें मेरे पास, कम राइट बैक। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगर बच्चन साहब सेट पे कुछ डिमांड कर देते थे तो वो होना ही होना था। ऐसा कोई नहीं था सेट पे जो हम तुम्हारे बाप हैं की बात ना सुने। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड ऐसे ही कुछ हुआ मूवी याराना के सेट पे। सो होता यह है कि नीतू सिंह की ना उसी समय शादी होती ऋषि कपूर से, एंड शी वाज मिसिंग हिम। तो जब उन्होंने कॉल करने की कोशिश की तो वहां पे ना ढेर सारी बारिश होती है कोलकाता में, एंड इसीलिए नेटवर्क उस टाइम पे वैसे भी बहुत प्रॉब्लमैटिक होते थे, नेटवर्क नहीं होता है। तो उनकी 3 दिन तक ऋषि कपूर से बात ही नहीं हो पा रही थी। याराना के गाने के लिए शूटिंग हो रही थी कोलकाता के स्टेडियम में, एंड सडनली नीतू सिंह started crying जोर जोर से। बच्चन साहब उनके पास गए और उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उन्हें पता चला कि उनको अपने पति ऋषि की बहुत याद आ रही है और प्रोड्यूसर जो है ना वो उनको छुट्टी नहीं दे रहे। प्रोड्यूसर का कहना था कि भाई सेट पे बहुत सारा पैसा लगा है तो हीरोइन अभी नहीं जा सकती। बच्चन साहब ने फौरन प्रोड्यूसर साहब को बुलाया और कहा कि नीतू की अभी टिकट होगी ASAP। मुंबई की टिकट हुई, नीतू सिंह 2 दिन की छुट्टी लेकर के गई और वापस आ गई। वो पूरा गाना जो है ना उसमें बस थोड़ी देर के लिए नीतू सिंह दिखाई गई है, एंड रेस्ट द एंटायर गाना वाज पिक्चराइज्ड ऑन अमिताभ बच्चन। याराना फिल्म का एक गाना इसी बात पे कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: अब बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी की शूटिंग हो रही थी, नाम था मूवी का गंगा की सौगंध, और यहीं पे सेट पे खड़े सब लोगों को कुछ कुछ अंदाजा हो गया। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस वीक उस जमाने की कुछ रेट्रो आइकॉनिक लव स्टोरीज के साथ। सो अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी की डेफिनेटली बात हो रही है। एंड हुआ ये कि जब आप किसी से बेहद प्यार करते हो, अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव करे तो भाई आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद बच्चन साहब। सो दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो चुकी थी मूवी दो अनजाने के सेट पर, लेकिन ये किसी को नहीं पता था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि रेखा जी जो थी ना, वो एक बंगलो में मिला करती थी, ये उनके दोस्त का बंगलो हुआ करता था बच्चन साहब से। फिर एक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई गंगा की सौगंध, और इस फिल्म के दौरान रेखा जी से उनके एक को स्टार ने ना बहुत रूडली बिहेव किया। बच्चन साहब को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको कस के झटक दिया। फिर क्या, वहां मौजूद सारे कास्ट और क्रू को पता चल गया था कि कुछ तो चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ बताऊंगी आपको श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जींस।

सबकी बच्चन साहब को अमित बुलाने की इतनी आदत थी कि कई बार तो लोग अपने डायलॉग्स भी कैरेक्टर नेम देने की जगह अमित दे देते थे। पुरानी जीन्स में आपको श्रेया के साथ आज याराना फिल्म की बात हो रही है। नीतू सिंह के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही थी। याराना फिल्म में बच्चन साहब इज पेयर्ड ऑपोजिट नीतू सिंह। अब होता ये है कि अमित उनका जो निक नेम था ऑन द सेट, सब उन्हें प्यार से फॉन्डली अमित अमित करके बुलाते थे। नीतू सिंह जब जब अपनी लाइन्स बोल रही थी ना, तो उनका कैरेक्टर नेम जो कि था किशन, उसको भूल करके अमित बोल जाती थी। एंड दैट हैपेंड रिपीटेडली। इन फैक्ट मतलब एक जगह है जहाँ पे उनकी फर्स्ट लाइंस है, जैसे ही फिल्म खुलती है, देखो किशन कोई आ गया है। और उन्होंने पता है कम से कम 12 रीटेक्स के बाद इस वर्ड को किशन को बोल पाई थी वो, क्योंकि बार बार वो कह रही थी देखो अमित कोई आ गया है। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी उस जमाने की बातें उस जमाने के गानों के साथ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको भी मुझे कुछ बोलना है या फिर किसी तरह की शिकायत है, देन ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू मी फेसबुक और इंस्टा पे। मेरा हैंडल है RJ Shreya with Love, that's RJ SHREYA Shreya with Love।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डायरेक्टर राकेश कुमार जिन्होंने याराना बनाई विद बच्चन साहब, वो चाहते थे कि एक और फिल्म बने। इस फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फिल्म का नाम होना था चार्ली। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आज ना याराना की बात हो रही है। सो बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रही है फिल्म। इनफैक्ट सिलसिला जिससे ज्यादा उम्मीदें थी, ये दोनों कुछ कुछ आसपास ही रिलीज हुई थी, सिलसिला बॉक्स ऑफिस पे धड़ाम हो गई, बट याराना डिड वेरी वेल। सो हुआ ये कि राकेश कुमार ने फिर बच्चन साहब को पटा लिया कि एक और फिल्म साथ में करेंगे और वो होनी थी चार्ली। इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी, कास्ट सेट हो गई थी, अमिताभ बच्चन वॉज गोइंग टू बी पेड विद पद्मिनी कोल्हापुरी, लेकिन बीच में हो गया एक अनफॉर्चुनेट हादसा एंड दैट वॉज कुली। कुली पे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो बच्चन साहब वॉज बेड रिडन एंड हॉस्पिटलाइज, ऑल ऑफ दैट हैपन। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि राकेश कुमार ने एक और पिक्चर बनाई और उस पिक्चर का नाम था कौन जीता कौन हारा। क्योंकि राकेश कुमार बच्चन साहब को अपने लिए लकी चाम मानते थे, तो अमिताभ बच्चन ने इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी और कुली की इंजरी से रिकवर करने के बाद इस मूवी में स्पेशल अपियरेंस दिया ओनली फॉर हिज डायरेक्टर। पुरानी जीन्स में ना बहुत सारी बातें होती है मेरे पास शेयर करने की, लेकिन हाँ इस जमाने की नहीं, उस जमाने की, सिर्फ मैं हूँ इस जमाने की। एंड इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, कुछ कहना है, कुछ लिखना है, तो आरजे श्रेया विद लव इस नाम से हूँ फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey also available on 103.3 FM HD2 it's hot
0: aap sun rahe hain purani jeans shreya ke sath sirf mirchi par

फिर क्या बच्चन साहब ने अपनी फेवरेट रेखा जी को बुला लिया। पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ याराना फिल्म की बात हो रही है। अब ये वही टाइम था जब नीतू सिंह, जो इस फिल्म की हीरोइन थी ऑपोजिट अमिताभ बच्चन, उनकी नई नई शादी हुई थी ऋषि कपूर से।

वो ऑलरेडी ऋषि कपूर को बहुत मिस करती थी सेट पे, तो एक बार तो बच्चन साहब ने यू नो प्रोड्यूसर से लड़ करके बीच शूटिंग के दौरान उनको मुंबई वापस भिजवा दिया कि भाई ऋषि से मिला और वापस आओ। लेकिन डबिंग के लिए उनकी अनअवेलेबिलिटी काफ़ी टाइम तक रही, ऐसे में मूवी रिलीज ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर अमिताभ बच्चन ने क्या किया, उन्होंने अपनी फेवरेट रेखा जी को बुलाया। रेखा जी ने आधी फिल्म में नीतू सिंह के लिए डबिंग की है, तो अगर आप ये फिल्म देखोगे ना, आपको आधी फिल्म से नीतू सिंह के डायलॉग्स जो हैं वो रेखा जी की आवाज़ में सुनने को मिल जाएंगे। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की जम करके बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं आप और मैं मिलके। सो कम बैक राइट हियर। मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व

0: बड़ा पसंद आता है। एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखा हो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हाँ, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्ची आए वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

इस एक फिल्म की वजह से अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब में हमेशा के लिए एक दरार पड़ गई थी। पुरानी जीन्स पे आपू श्रेया के साथ और आज ना याराना फिल्म की गप्पे मार रहे हम लोग। सो होता ये है कि याराना और सिलसिला एक ही साथ शूट होती है, मतलब ऑलमोस्ट यू नो एक ही टाइम पे शूट हो रही होती है, लेकिन सिलसिला पहले कंप्लीट हो जाती है। सिलसिला के कंप्लीशन के बाद बच्चन साहब को जाकर के ना अपने डायलॉग्स की डबिंग करनी होती है। बच्चन साहब हमेशा से अपने डायलॉग्स हमेशा से फटाक से डब कर देते थे, वो नहीं चाहते होते थे कि भाई किसी भी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो। तो सिलसिला में वो कुछ अलग करने लगे थे। सिलसिला में पहले उन्होंने 1 घंटे की डबिंग शुरू की और उसके बाद वो हर डबिंग को कैंसिल कर देते। यश चोपड़ा साहब तक ये बात पहुंची, उन्होंने कुछ महीने छोड़े, फिर उसके बाद 1 साल छोड़ा और फिर जब इस मूवी को सिलसिला को 2 साल लग गए सिर्फ डबिंग के चक्कर में, उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने जाकर के बच्चन साहब से बात की तो उन्हें पता चला कि बच्चन साहब जो थे वो याराना के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि सिलसिला और याराना की रिलीज क्लैश हो। आगे एक और रीजन दिया गया है कि क्यों अमिताभ बच्चन सिलसिला की डबिंग पे नहीं पहुंचते थे। अभी आपको बताऊंगी एक और कहानी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक थियोरी का ये भी कहना है कि अमिताभ बच्चन ने रशेस देख लिए थे मूवी सिलसिला के और उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी, इंडियन ऑडियंस को ये मूवी अच्छी नहीं लगेगी और इसीलिए वो चाहते थे कि याराना की रिलीज पहले हो जाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज ना एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसने यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कई सारी फिल्में एक साथ की थी, उन दोनों की दोस्ती में दरार ले आई थी। इस फिल्म का नाम था याराना। सो होता ये है कि सिलसिला ख़त्म हो जाती है और सिलसिला की रिकॉर्डिंग जो थी ना वो बाकी थी, एज इन डबिंग बाकी थी। अमिताभ बच्चन का ये रिकॉर्ड था कि वो अपनी डबिंग, अपने डायलॉग्स फटाफट बोल करके ना मूवी को कंप्लीट कर देते थे, लेकिन सिलसिला के रिलीज पे, सिलसिला की डबिंग पे वो पहुंच ही नहीं पाते थे। कई बार उन्होंने कैंसिल किया, कई बार वो सिर्फ एक एक घंटा स्टूडियो आते। यश चोपड़ा साहब पहले तो दोस्ती के नाम पे इसको लेट गो करते रहे। उसके बाद फाइनली एक दिन यश चोपड़ा साहब को पता चला कि बच्चन साहब जो याराना की शूटिंग साइमल्टेनियसली कर रहे थे वो याराना के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और इसलिए वो चाहते थे कि याराना फिल्म पहले रिलीज हो जाए। बच्चन साहब का ये कहना था कि वो सिलसिला के रशेस देख करके पहले ही समझ गए थे कि मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी और इसीलिए वो चाहते थे कि भाई एक फ्लॉप फिल्म उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म के पहले ना आए, एंड दैट्स व्हाई यू वांटेड कि याराना पहले रिलीज हो जाए। वेल, इन सब चीजों की वजह से उन दोनों ने उसके बाद कभी काम नहीं किया, यश चोपड़ा एंड अमिताभ बच्चन। इनफैक्ट तब तक काम नहीं किया जब तक बच्चन साहब ने खुद जाकर के मोहब्बतें में यश चोपड़ा से काम नहीं मांगा। पुरानी जीन्स पे इस फिल्म याराना की और भी बातें। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कोलकाता का भरा हुआ स्टेडियम, 20,000 की पब्लिक एंड बच्चन साहब का ये डांस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज ना याराना फिल्म के गप्पे मार रहे हैं हम लोग। सो बच्चन साहब ने जब ये गाना सुना, सारा जमाना, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन जब उनको कॉस्ट्यूम मिली तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ही सेड कि गाना इतना वाइब्रेंट है, इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें मेरी कॉस्ट्यूम एकदम फ्लैट लग रही है। तो इस कॉस्ट्यूम में अगर आप ये गाना देखो तो बल्ब्स लगे हुए हैं एंड बल्ब्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। ये जो आइडिया था ना, ये क्रिएटिव आइडिया अमिताभ बच्चन ने खुद दिया था ऑन द सेट कि इसमें बल्ब्स लगाओ और उन बल्ब्स का जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो मेरे हाथ में दो, जो कि इनविजिबल होना चाहिए। एंड ही सेड कि मैं बीट्स के अकॉर्डिंगली इसको ऑन ऑफ करूंगा। हाउ क्रेजी। अच्छा, जब शूटिंग खत्म हो गई ना इस गाने की तो क्या हुआ, ये भी बताऊंगी आपको। फिलहाल यही गाना सारा जमाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सोचो आपको निकल के भागना हो और फैंस को पता चल जाए कि आपकी गाड़ी खराब हो गई हो, और कुछ 100 की तादाद में फैंस नहीं, 20,000 फैंस। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज गप्पे मार रहे हम लोग मूवी याराना के। तो वो गाना है ना सारा जमाना, ये कोलकाता के एक स्टेडियम में शूट हो रहा था इन फ्रंट ऑफ 20,000 लाइव पब्लिक। और बच्चन साहब ने खुद अपने व्लॉग में बताया है कि भयानक पुलिस फोर्स उस समय वहाँ पे डिप्यूटेड थी कि वो फैंस को रोक पाए। भाई किसी तरह गाने को रिकॉर्ड किया गया, शूट किया गया, ये सब हुआ। और उसके बाद बच्चन साहब और नीतू सिंह गाड़ी में बैठ करके बस निकलने ही वाले थे कि उनकी गाड़ी फैंस के बीच में ही रुक गई। सो बच्चन साहब सेड ऑन द व्लॉग कि पुलिस फैंस को रोक रही थी पर वो रुक नहीं रहे थे, दोनों थोड़े स्केर्ड भी थे, अमिताभ बच्चन एंड नीतू सिंह। बट आपको पता है उनके फैंस ने क्या किया? जैसे ही उन्हें पता चला कि अमिताभ बच्चन की गाड़ी आगे नहीं चल रही है, फैंस ने एक्चुअली गाड़ी को लिफ्ट कर लिया और लिफ्ट करके उनको होटल के अंदर तक पहुँचाया। दिस इज क्रेजी है ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, उस जमाने के किस्से बहुत सारे ढूंढ के लाती हूँ। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती।

0: सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे अभिश्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी लेट्स हिट द हाईवे। देखो आज का मेरा हाईवे हिट ना, एक्चुअली में ये गाना ट्रम्प कार्ड है। ओके, अगर आपको अपनी महबूबा की तारीफ करनी है तो इससे बेहतरीन गाना नहीं हो सकता, जो कि रफ़ी साहब ने गाया है कि मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे चांद सा हंसी, चांद ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो जब भी उनको मनाना हो ना, बस इस गाने के बोल बोल दो या फिर ये गाना बैकग्राउंड में लगा दो। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। कल मिलते हैं, गुड नाइट।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

0: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका

0: बताओ, इंस्टाग्राम पर आए एट मिर्ची जीतू राज, समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतू राज। Only on Mirchi, it's hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: का समय
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उस गिल्ट से बाहर कैसे निकले, आइए इस बात को जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो वन ऑफ द बिगेस्ट मार्शल आर्ट्स के जो प्रोपोनेंट रहे हैं, मुझे बहुत पसंद थे जब मैं बड़ा हो रहा था, उनकी फिल्में देखता था, ब्रूस ली। तो उन्होंने एक बार बहुत फेमसली कहा है कि आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड टू लिव अप टू माइन। तो बहुत खूबसूरत सी लाइन है, इसमें थोड़ा ईगो भी है और कहीं ना कहीं
4: देयर इज लॉट ऑफ विजडम। इसमें ईगो नहीं है, समटाइम्स यू नो वी फील इसमें ईगो है कि लिविंग अप टू योर एक्सपेक्टेशंस मींस आई हैव टू प्रूव समथिंग टू यू।
3: मुझे कुछ प्रूव करने की
4: जरूरत नहीं, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू यू। देयर इज लॉट ऑफ विजडम, इट्स नॉट अबाउट बीइंग वीक। ये लाइन कई बार सुनकर के लगता है बहुत वीक है, बट देयर इज लॉट ऑफ विजडम इन इट।
3: यू
4: सी, माय पर्पस इज टू लिव माय लाइफ विद पीस एंड हैप्पीनेस
3: एंड योर पर्पस एंड यू डोंट हैव टू लिव अप टू माय एक्सपेक्टेशंस।
4: देयर इज लॉट ऑफ विजडम, देयर इज लॉट ऑफ फ्रीडम।
3: ये बात बहुत, लेकिन कभी कभी ना दूसरों के एक्सपेक्टेशन में, क्यों आपसे मैंने ये लाइन पढ़ के आपको सुनाई, इज दैट कभी कभी दूसरों के एक्सपेक्टेशन जब हम पूरी नहीं कर पाते ना तो थोड़ी गिल्ट भी होती है कि यार ये पापा ने ये बोला था मैं कर नहीं पाया, ऐसा ऐसा मेरे बॉस ने बोला मैं इतना भी नहीं कर पाया, मेरी बीवी ने ये बोला मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो गिल्ट ट्रिप पे भी हम कई बार चले जाते हैं। डिप्रेशन वगैरह और मायूसी तो दूसरी बात है, कभी कभी कुछ ना करने पे हम अपने आप को बहुत दोषी पाते हैं, क्योंकि

0: ये नहीं बोलना चाहिए, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, सामने वाले तो तुमसे इतनी सी चीज मांगी थी तुम ये भी नहीं कर पाए,
1: वो अलग है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है, दो हो गया,
0: एक खुद और एक दूसरे का,
1: एक है वो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो अलग, मैंने दोनों चीजें अलग है, एक है आपकी एक्सपेक्टेशन, पहले उसको डील करते हैं, ये आपकी कॉन्वर्सेशन है कि मैं इतना सा भी नहीं कर पाया, मैं वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं हो पाया, उस समय पर वो इतने बीमार थे लेकिन मैं वहाँ पर नहीं था, मैं डिलीवरी पर भी नहीं था, सो मेनी थिंग्स होता है। अभी सी कभी कभी ऐसा हो सकता है आप आर्मी में है, ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, कई बार नहीं पॉसिबल होता, तो पहली चीज है रुक करके रिफ्लेक्ट करें कि क्या ये पॉसिबल था कि नहीं पॉसिबल था, अगर वो चीज पॉसिबल नहीं थी तो फिर तो गिल्ट में नहीं जाना चाहिए।
0: आर्मी और क्रिकेटर और नेशनल ड्यूटी के लिए तो कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि आप लेट्स से नॉर्मल आप जिंदगी है ऑफिस जा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आप मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने आओगे, मेरे साथ आप रहोगे, या यार घर आते हुए सब्जी ले आना,
1: वो एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं अलग है, वो देखेंगे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं,
0: हम नहीं कर पाए पूरी छोटी छोटी चीजें हम नहीं कर पाते हैं, तो हम खुद डाउट में चले जाते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि यार मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं अच्छा भाई नहीं हूँ, या अच्छा वर्कर नहीं हूँ, मैं कह रहा
1: हूँ
0: तो उसी चीज को कैसे आप हैंडल करोगे,
1: वो आप अपने साथ बैठ करके देखेंगे वो पॉसिबल भी है कि नहीं। ऐसी एक्सपेक्टेशंस अपने पर हम डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं एयरपोर्ट पिकअप नहीं करने पाया, पर हो सकता है कि आपके कोई पहले से जॉब कमिटमेंट थे, तो उसमें वो चीज कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो टाइम था ना जिस समय आपकी पहले से ऑलरेडी एक कमिटमेंट थी, आपको अपने साथ बात करके कहना पड़ेगा मैं जरूर चाहता बट पॉसिबल नहीं है, ये ऑलरेडी कमिटमेंट थी, इट इज दैट इज व्हाई आई सेड लोग हमारे से कैसे बात करते हैं वो तो सेकेंडरी है, हम अपने से कैसे बात करते हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी।

0: सिस्टर श्रेया। आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का, उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
1: मेरा एक सवाल है, मैं खुलकर हंस नहीं पाता बहुत साल से, रिएक्शन भी होता है तो मन ही मन में, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा सोच रखा है कि दिस इज हु आई एम, उन्होंने अपने आप पे एक पाबंदी से बना रखी है कि मेरी ऐसी ही इमेज होनी चाहिए, ऐसा ही लोगों को लगना चाहिए कि मैं गंभीर हूँ, गौतम नहीं लेकिन सीरियस हूँ। तो शायद वो अपने एक अपने आप को एक जेल में डाल रखे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है।
2: मल्टीपल रीजन हो सकते हैं एक्चुअली, व्हेन आई डोंट नो बिकॉज नॉट वेरी क्लियर, सम पीपल आई डोंट नो दे वर ट्रैप्ड। बहुत सटल ट्रॉमास भी होते हैं, इट मे नॉट बी विद हिम, आई डोंट नो। सटल ट्रॉमास होते हैं, सटल ट्रॉमास कैसे होते हैं कि आपके साथ कुछ नहीं हुआ पर आपने घर में बहुत कन्फ्रंटेशन देखा है, आपने घर में बहुत आर्ग्यूमेंट देखा है, कभी कभी फिर ऐसे के बाद आपको ऐसा लगता है मैं खुश हो भी कैसे सकता हूँ, मैं कैसे हंस सकता हूँ। अगर आप बहुत खुश भी होते हैं ना तो आपको गिल्ट फीलिंग होती है, और घर में भी समझो अगर कोई दुखी है या कुछ है और आपने इंजॉय किया, यू हैड अ गुड डे, और किसी ने पूछा आप कहाँ गए थे, तो आप झूठ बोल देंगे या आपको ऐसा लगे कि सब इतने दुखी हैं तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं कैसे खुश कर हंस सकता हूँ। कभी कभी जो बाहर की पर्सनालिटी है उसका हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा था, हमारा संघ कैसा था, लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इज यू नो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारी पर्सनैलिटी पर, वो पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है। आप चेंज कर सकते हैं पर डोंट फाइट अगेंस्ट इट, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अगर हम मनी मन हंसते हैं तो भी ठीक है, अगर हम खुल के हंस पाते हैं तो भी ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुश हैं, कंफर्टेबल हैं। कभी कभी कई लोग बहुत जोर जोर के बाहर से हंसते हैं, अंदर से बहुत दुखी होते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, चार्ली चैपलिन वाज नोन टू बी दैट पर्सन।
2: या सी, जोर से बाहर हंस रहे हैं, सबको बाहर हंसा रहे हैं पर अंदर कई बार बहुत दर्द में भी होते हैं। तो जोर से हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं उससे ज्यादा ये चेक करें कि आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने से कंफर्टेबल हैं। अगर कोई अंदर में इश्यू है, कोई ट्रॉमा है, उसको हील करने की जरूरत ज्यादा है। देवताएं तो मुस्कुराते हैं, कभी भी जोर से हंसते नहीं है, तो अगर आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं सो मे बी इट्स अ डिवाइन वर्च्यू।
1: वाह क्या बात, बहुत बेहतरीन।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

थॉट। हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खुद की गलती के कारण हुए गिल्ट को खत्म कैसे करें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम अपने आप से बहुत अच्छे से बात करते हैं सिस्टर श्रेया, लेकिन कई बार क्या होता है, आपके आसपास वाले लोग बोलते हैं तुम बड़ा सेल्फिश है यार, तू सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। कभी ना कभी एक डाउट तो आ जाता है ना, मतलब भगवान तो नहीं है, आपको लगता है यार क्या ऐसा सच है। मैं तो जैसे एक छोटी सी बात है, आमिर खान का एक इंटरव्यू देख रहा था सितारे जमीन के दौरान, वो कहते हैं कि कोविड के दौरान मैं पहली बार जिंदगी में अपने साथ बैठा था, और जिंदगी में जब से मैं बहुत यंग हूँ तब से मैं काम कर रहा हूँ, कभी रुकने का मौका ही नहीं मिला। कोविड में मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने रियलाइज किया कि मेरे जो अपने जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, मैं उनको अपना टाइम नहीं दे पाया। तो मैं भर भर के अपना टाइम दे, मैंने डिसाइड किया कि मैं

0: फैक्ट्री छोड़ रहा हूँ, और वो अपनी अम्मी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ बहुत टाइम देने लगे। ये गिल्ट फीलिंग थी उनके अंदर जो कोविड के दौरान में आई, तो उन्होंने उसको फिक्स किया। ये गिल्ट फीलिंग का कोई उपाय नहीं है। आप
1: दो चीजें हैं, सेल्फ रियलाइज करना और अपने को ट्रांसफॉर्म करना। वेरी गुड, आपने कहा भगवान नहीं है, ना हम भगवान है, ना हम परफेक्ट है, हमारे से भूले हो सकती है। तो आपने 10 साल भी अपने करियर की कोई भूल करी, लेकिन अब आपको रियलाइज हो रहा है, तो आप यू आर फिक्सिंग इट, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप गिल्ट में जाते रहेंगे, मैंने ऐसा किया, मैंने टाइम नहीं दिया, मैं दे नहीं पाया, मैं दे नहीं, आप दर्द में जा रहे हैं।
0: तो आप कह रहे हैं कि अगर आपको रियलाइज हो गया तो फिक्स कर दो उसको।
1: अगर आप दर्द में जाकर के फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे तो आप क्या देंगे?
0: दर्द ही देंगे, क्या बात है।
1: तो गिल्ट की जगह वर्ड जो है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। वो 10 साल बाद भी नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए कोविड का वेट नहीं करना चाहिए,
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: यू शुड बी वेरी अवेयर, आपके सराउंडिंग से, आपकी फैमिली से अवेयरनेस होनी चाहिए। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, भूले होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भूल बार बार रिपीट होना बड़ी बात है। अगर आप वो भूल सेकेंड टाइम कर रहे हैं, वो भूल नहीं है, वो डिसीजन है, यू कॉन्शियसली चूजिंग टू डू दैट।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: सो समटाइम्स ऐसी अवेकनिंग भी होती है कि कोविड ने सबको रोका और आपने अवेकन किया। दूसरा होता है कि समझो आपसे कोई भूल हो भी गई, आपको लगा कि ये होना चाहिए था पर मैंने नहीं किया, भगवान नहीं है, परफेक्ट नहीं है, रियलाइज कर। गिल्ट एक सेकंड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ट्रांसफॉर्म के लिए पावर लगती है,
0: बहुत बड़ी।
1: गिल्ट डिप्लीट कर देती है। अगर आप बहुत ज्यादा गिल्ट में चले गए तो आपने सारी की सारी शक्ति खत्म कर दी, तो आप अपने को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? सो रियलाइज, 1 second of guilt, more of realization, and then it's about transformation. अगर transform ही नहीं हुआ, कहते हैं ना, best apology is changed behavior.
0: वाह क्या बात है, the best apology is your changed behavior. बहुत बढ़िया।
1: तो कई बार हम इतनी बार sorry कहते हैं, मैं नहीं था, मैं नहीं था, but then again we do the same thing.
0: तो फायदा क्या हुआ?
1: Fix तो किया नहीं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक्सपेक्टेशन से डील कैसे करें, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक और चीज मैं कहीं पढ़ रहा था और बहुत खूबसूरत सी बात लगी कि एक्सपेक्टेशन से हटना कैसे है, उसका एक बहुत बड़ा तरीका है। हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्सपेक्टेशंस इज टू सर्व अदर्स, आप दूसरों को सर्व करिए। और वो कहते हैं कि जब आप चाहते हैं कि आपको कोई सर्व करे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो ना करे आपको, तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन जब आप सर्व करना चाहें तो आपको कौन रोक सकता है। जब आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करे, हो सकता है सामने वाला ना करे, लेकिन जब आप किसी को प्यार करना चाहते हैं बेइंतहा, तो आपको कौन रोक सकता है। तो सर्विंग में एक ऐसी बात आ जाती है जिससे क्या है, आप ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन को धराशाही कर देते हैं, क्योंकि आप अपने मन से जाके सामने वाले करो, और जब आप करते हैं तो सामने से आपको ज्यादा ही मिलता है।
4: यस, एक्सपेक्टेशन इज आप किस में शिफ्ट कर रहे हैं, आप टेकिंग से गिविंग में शिफ्ट कर रहे हैं, लेने से

0: में एक्सपेक्टेशन वरना मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मेरा हाथ ऐसा है
1: हाँ।
0: तो ऐसा हाथ किसका होता है?
1: हाँ, मांगने वाले
0: मांगने
1: का।
0: वाले का मना जो खाली है
1: बिल्कुल।
0: अब जब आप सर्विंग की बात कर रहे हैं तो आप हाँ। कह रहे देना, तो आपका हाथ ऐसा हो गया। देने वाला मना कौन है? देवता, दाता।
1: हाँ।
0: अब हमें ये नहीं पता चलता कि जब हम देते हैं सो हु इज द फर्स्ट वन टू रिसीव।
1: आई एम अज्यूमिंग आप कह रहे हैं खुद।
0: आप कभी ट्राई करके देख लें, अगर आप समझो आपको गुस्सा आता है अभी, समझो ये भी दे रहे हैं हम, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव दे रहे हैं हम। गुस्सा जब करते हैं तो वो पहले किसको, हु
1: डिस्टर्ब तो हम ही पहले
0: पहले हम ही होते हैं ना। एनीथिंग, एनी इमोशन जो आपको रेडिएट करनी है, एनी फीलिंग जो आप रेडिएट करते हैं वो आप पहले एक्सपीरियंस करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि अगर हम कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका फर्क हम ही को पड़ता है।
0: इसीलिए जीवन में एक्सपेक्ट करने की जगह देना। हमारी एक सीनियर सिस्टर थी, बहुत सुंदर, वो कहती थी गिव लव टेक लव, गिव हैप्पी टेक हैप्पी, गिव पीस टेक पीस। सिंपल सा मंत्र था पर उसमें बहुत डेप्थ थी। आपको जो चाहिए
1: वो आप पहले देना सीखो,
0: आप देना शुरू कर दो। सीखो तो है ही नहीं, हमें आता है। आप देना शुरू कर दो। आपको चाहिए कोई आपको अंडरस्टैंड करे, आप उनको समझना शुरू कर दो। आप जो देंगे ना वो पहले आपको मिलेगा, फिर उन तक जाएगा, फिर जो जाएगा वो ही लौट करके आएगा,
1: लौट के आएगा और भर भर के आएगा।
0: सो हाउ मेनी टाइम्स आर यू गेटिंग? ट्वाइस।
1: ट्वाइस, क्योंकि जब आप दे रहे तब भी आपको मिला।
0: सो यू आर क्रिएटिंग, रेडिएटिंग एंड रिसीविंग इट बैक।
1: चलिए कल से मैं सबको पैसे बांटना शुरू करता हूँ।
0: पैसे भी, यू नो दिस लॉ वर्क्स एवरीवेयर। दान भी जो लोग करते हैं आप उनको पूछ लीजिए कि उनको कभी कम होता है कि ज्यादा आता है।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ रहा था, वो 99.5% अपनी विल जो है वो कह रहे हैं कि मैं डोनेट कर रहा हूँ। वो कहते हैं जो है वो भी काफी है मेरे लिए, 5 different संस्थाओं को दे रहे हैं।
0: मैंने इसमें जो लॉ है ना, लॉ क्या कहता है, सफल करने में सफलता है, देने में लेना समय है।
1: देने में लेना समय,
0: देने में लेना समय, इट्स मोर लाइक इन्वेस्टमेंट। हमें लगता है हम दान कर रहे हैं, दान नहीं होता, इट्स एन एनर्जी। मनी के रूप में जा रही है, समय के रूप में जा रही है, शक्ति के रूप में जा रही है, इट्स एन एनर्जी विच इज गोइंग इन टू द यूनिवर्स। उसने लौट करके आना ही है। तो आप किसी भी, किसी को भी पूछे जो दान करते हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो कहते हैं हमारा बढ़ता है, घटता नहीं है। ये उनका जिगरी एक्सपीरियंस है। दैट इज व्हाई एवरी ईयर वो और ज्यादा दान करते हैं, और ज्यादा दान करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि दान करने में हमें कभी कम नहीं हुआ, खुटा नहीं है, अखुट हो जाता है, वो और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये धन में भी लॉ काम करता है। इट डजंट मीन आप सारा दान कर दो, विच मीन्स कि अगर आप सर्टेन परसेंटेज दान करते हैं सो वो लौट करके आता है, इट्स एन एनर्जी। ऐसे हर चीज में आप प्यार के साथ करके देख लीजिए, दो चार दिन बोलना बंद करें कि मुझे प्यार चाहिए, इट्स अ वाइब्रेशन,
1: करके देखें।
0: आप देना शुरू करें, वो चीज लौट करके आना शुरू हो जाएगी।
1: जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किशोर कुमार मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहे, उनका एक बहुत प्यारा गीत है कि प्यार बांटते चलो, तो वही बात आप कह रही हैं कि करके देखें।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
3: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
2: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
3: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
2: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। कविता है नागपुर से, लिखती है कि जब सामने वाला हर छोटी और सिंपल बात पर गुस्सा करता हो और अपना नेचर बदलना नहीं चाहता हो किसी के लिए भी, तो क्या करें। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि और अगर वो स्पिरिचुअल बातें सुनने के लिए भी तैयार ना हो तो हमें उस इंसान के साथ कैसे रिएक्ट या बिहेव करना चाहिए।
2: कविता को अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए। से हम सबसे ज्यादा क्या कोशिश कर रहे होते हैं, उनको स्पिरिचुअल बातें सुनाएं, वो चेंज हो जाए तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो वी ट्राइंग टू चेंज द अदर पर्सन। वो होता नहीं है, मोस्ट केसेस में नहीं होता है।
1: बिल्कुल सही।
2: वो उनको जब अवेकनिंग होगी तब होगी। अब अगर कोई है जो कुछ ना कुछ गलत बोलता है या गलत व्यवहार करता है, मैं कई बार ये चीज कहती हूँ, जो पेपर रोज आता है ना उसमें नहीं फेल होना चाहिए। अचानक आता है तो अलग चीज है। आप रोज अगर बिजी स्ट्रीट पर चलाते हैं, आपको पता ही है कि इधर से कोई ओवरटेक करता है, इधर से कोई गलत चलाता है, आप खुद ही एक कम स्पीड में बैलेंस होकर माइंडफुल होकर के चलाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: आपको प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे अगर आपको पता है, पहले तो जो गलत बोलता है या बात बात पर ताने देता है या बात बात पर, प्लीज अंडरस्टैंड वो अंदर से बहुत वीक है, वो अंदर से बहुत दर्द में है। ये भी हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि वो सिर्फ दुखी व्यक्ति दुख दे सकता है। कोई भी खुश व्यक्ति किसी को दर्द नहीं दे सकता।
1: हर्ट पीपल।
2: सो वट एवर इज विद इन यू, जो आपके अंदर है वही बाहर निकल करके आएगा। इसीलिए जो ऐसा कर रहा है वो पहले अंदर से खाली है। अब इसको तीन स्टेप में करेंगे। पहला, आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है।
1: जी।
2: आपको अपने को प्रोटेक्ट करने का मतलब है, उन्होंने कुछ बोला, आप उसको अपने मन में नहीं चलाएं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो जो बोलते हैं वो नहीं हमें दुख देता, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ करके जो हम अपने मन में चलाते हैं वो हमें दुख देता है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। सेकेंडली, हमें कुछ प्रैक्टिसेस अपने जीवन में लेकर आने होंगे जो हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाए।
1: बिल्कुल।
2: परमात्मा को अपने जीवन में लेकर आए। वी डोंट टॉक अबाउट गॉड क्वाइट अ लॉट, बट वो ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हम जितना उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो पावर हमारे अंदर आने लगती है। थर्ड, वो पावर हम अगर सामने वाले को रेडिएट करते हैं तो उनके अंदर भी धीरे धीरे चेंज आने लगता है। तो इसीलिए प्रोटेक्ट योरसेल्फ, एम्पावर योरसेल्फ एंड देन रेडिएट राइट एनर्जी। जो भी आपको दुख दे रहा है, कभी कभी डीप कर्मा भी होता है। अगर एक ही व्यक्ति से बार बार आ रहा है तो कोई ना कोई पुराना कार्मिक अकाउंट भी होता है। वहाँ से बार बार ब्लैक बॉल आ रही है। आप यहाँ से व्हाइट भेजते जाएं, किसी दिन तो उनके ब्लैक खाली हो जाएंगे, फिर आपके व्हाइट वहाँ जमा होंगे, फिर वो लौट करके आने शुरू हो जाएंगे।
1: बहुत बेहतर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
1: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
0: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
1: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खुद के प्रति कंपैशन रखना इम्पोर्टेंट क्यों है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक जगह मैं पढ़ रहा था कि कभी कभी, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है वर्किंग प्लेस में, सेल्फ कंपैशन भी बहुत जरूरी है। तो एक किताब है, बहुत कमाल की किताब है, क्रिस्टन नेफ ने लिखी है, और किताब का नाम ही है सेल्फ कंपैशन, और उसके टाइटल में कहते हैं द प्रूवन पावर ऑफ बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों को कंपैशन देना तो बहुत जरूरी है, लेकिन खुद के लिए भी कंपैशन होना बहुत बहुत जरूरी है।
4: अगर आप खुद के प्रति कंपैशनेट नहीं है, आप दूसरे के प्रति हो ही नहीं सकते।
3: अरे वाह,
4: हो ही नहीं सकते। सी द फर्स्ट रिलेशनशिप इज विद आवरसेल्फ्स। जैसा हमारा रिश्ता हमारे साथ होता है, समझो मेरे से कोई भूल हुई, बट आई सैट विद माई सेल्फ एंड आई वॉज कंपैशनेट टुवर्ड्स माई सेल्फ, मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। और होंगे तब जब आपसे भूल होगी तो मैं कंपैशनेट हो सकती हूँ। अगर मैं अपने साथ नहीं होती तो वो मेरी नेचर ही नहीं है, तो सडनली आपके साथ कैसे आ जाएंगे।
3: इसलिए हम देखते हैं जो लोग खुद से बहुत टफ होते हैं ना,
4: औरों से भी टफ,
3: वो औरों से भी बहुत टफ होते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि वो फेलियर जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते।
4: फेलियर तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, पर ये जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, दे क्रिएट अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अदर्स।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार ये परफेक्शनिस्ट कोई बहुत उम्दा काम कर जाते हैं जो बाकियों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो भी हम देखते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स के बारे में, वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विथ, आमिर खान के बारे में बोला जाता है, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट हैं, उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है।
4: देखो फिर क्या होता है, काम में आप परफेक्शनिस्ट हैं, पर रिश्तों में गड़बड़ हो जाती है ना। क्योंकि रिश्तों में क्या है, अगर आप सब वैसे नहीं होते ना,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: रिश्तों में एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। जब हम अपने को एक्सेप्ट नहीं करते, हर चीज पहले अपने पर आती है।
3: बहुत बढ़िया,
4: क्या मैं अपने को एक्सेप्ट करता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी कॉन्वर्सेशन मेरे साथ कैसी है। अगर मैं अपने साथ काइंड हूँ, अपने को रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने को फॉरगिव कर पाता हूँ,
3: तो फिर दूसरों के साथ भी,
4: दूसरे को भी फॉरगिव कर पाते हैं। जो लोग अपने को फॉरगिव नहीं कर पाते, कई बार ना लोग अपने साथ बहुत हार्श होते हैं, अपने को फॉरगिव नहीं कर पाते, लेट गो नहीं कर पाते, तो वो दूसरे को भी फॉरगिव नहीं कर पाते।
3: बहुत अच्छी बात।
4: सो द फर्स्ट रिलेशनशिप इज इनवर्ड, आपका अपने साथ कैसा रिश्ता है, आप अपने साथ कैसे बात करते हैं, वहाँ आपकी नेचर डेवलप हो रही है, वो कैरेक्टर ट्रेट डेवलप हो रहा है, फिर बाहर तो नेचुरली आता है। आप जो हैं, सी इट इज लाइक आप संतरे को दबाएं तो जो है वो निकल करके आएगा। इट्स लाइक प्रेशर और सिचुएशन में जब आप दबेंगे, सो व्हाटएवर यू आर विल कम आउट इनटू द वर्ल्ड।
3: बहुत सही बोला आपने, क्योंकि मुश्किल समय में पता चलता है आपका ट्रू नेचर क्या है, तो उसके लिए आप अपने आप से कैसे बात करते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, बहुत जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक सवाल आया सर, मेरा सवाल ये है कि ईगो से और जेलेसी से कैसे दूर रहूं, लाइफ में बहुत दिक्कत आती है, प्लीज गाइड मी। तो सर से सवाल किया, लेकिन मैम भी जवाब देंगे इसका। तो
3: ईगो और जेलेसी दो चीजें हो गई। सी, जेलेसी का जो रूट कॉज है वो कंपैरिजन है। अगर आपको जेलेसी बहुत होती है तो आप अपने जीवन में फोकस न करके आप किसी और की यात्रा को देख रहे हैं, और किसी और की यात्रा को देख करके अपने मन में सोच रहे हैं कि उनका बहुत अच्छा जीवन है।
2: अब उससे दुखी होगा।
3: किसी का जीवन बहुत अच्छा भी होगा, अच्छा, पर हमें उनके लिए खुश होना चाहिए। वी हैव टू फोकस ऑन आवर जर्नी। जेलेसी का रूट ही कंपैरिजन है कि किसी को देखते रहना उसके जीवन को, एंड दिस इज बिकम, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है आफ्टर सोशल मीडिया। पहले हम अपनी दुनिया में सब बहुत खुश होते थे, लेकिन अब उसने क्या पहना है, उसकी गाड़ी कौन सी है, उसका घर कैसा है, वो ट्रैवल के लिए कहाँ गया था। अब हम ट्रैवल से खुश नहीं होते ना, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम कहाँ ट्रैवल पर गए थे, तो हम वो चीज कह सके। तो वो कंपेयर करते करते करते करते डिप्लीट होते जा रहे हैं, और इसलिए फोकस ऑन योर जर्नी, इंक्रीज योर कैपेसिटी अपना। वो दौड़ते भी है ना, घोड़े भी दौड़ते हैं, हॉर्स रेस भी होता है, तो उनको ब्लिंकर पहना देते हैं कि ना वो इधर देखे ना इधर देखे, नहीं तो स्पीड अपनी कम हो जाती है,
2: सामने देखते हैं।
3: हाँ, ऐसे जब हम औरों को देखते जाते हैं, दो चीजों में फर्क है, कंपैरिजन एंड इंस्पिरेशन।
2: हाँ, बहुत बढ़िया। तो ब्लिंकर्स लगाओ, इंस्पायर हो सामने वाले से।
3: कैसे पता चलेगा कि हम कंपेयर कर रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं?
2: अगर जेलेसी ना हो तो फिर इंस्पायर हो रहे हैं।
3: जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हम ज्यादातर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, और जब हम किसी से इंस्पायर होते हैं तो हम उसकी विशेषता याद रहती है।
2: अच्छा,
3: इसलिए कभी कभी आपको ये भी नहीं याद होगा ये चीज आपने कहाँ से सीखी थी। हाँ। तो मुझे ध्यान नहीं है वो ये था या ये। हाँ। था, बिकॉज यू वर मोर फोकस्ड ऑन लर्निंग
2: ऑन द पर्सनालिटी रादर देन द पर्सन।
3: जो भी आपको उससे सीखना था, किसी से आपने डिसिप्लिन सीखा, किसी से आपने फोकस सीखा, किसी से आपने हार्डवर्क सीखा, आपको ये भी ध्यान नहीं होता मैंने कहाँ से सीखा, बट योर होल गोल इज टू लर्न। आप अपने को इंस्पायर कर रहे हो, एंड इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, इट कुड बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे होते हो, तो दिन रात आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हो, उसकी विशेषता के बारे में नहीं सोच रहे होते।
2: बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत खूबसूरत।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, जाग जाओ मेरे प्यारे क्लॉक वॉचर, बिकॉज अब मॉर्निंग का वेकअप कॉल ऑफिशियली आ चुका है तुम्हारी लाइफ में. आई एम योर गर्ल प्रिसिला एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स, द ओनली प्लेस ऑन योर डायल वेयर कॉफी इज स्ट्रॉन्ग एंड द गॉसिप इज वेरी वेरी मिर्चीदार. एंड द ट्रैफिक, वेल I-95 इज एब्सोल्यूट मैडनेस, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा मैडनेस करने वाले हैं. लिसन, वेदर यू करंटली स्टक इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, डॉजिंग योर बॉसेस मैसेजेस और ट्राइंग टू कन्विंस योरसेल्फ दैट सीरियल काउंट्स एज बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, सुबह की पहली पहली मिर्ची लग चुकी है एंड आई एम हियर टू पावर योर डे विद अ लॉट ऑफ मिर्ची. अगले कुछ घंटों तक मैं और तुम साथ साथ में इस दिन को बनाएंगे और ज्यादा झकास और ज्यादा मिर्चीदार. फटाफट से जाकर तुम मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. मीनवाइल लेट मी प्ले सम मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू. व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करो

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले

0: एकदम क्वीन।
1: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
0: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
1: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
0: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
1: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
0: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
3: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
11: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
12: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
13: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोग थिएटर.com।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर. एंड अब सुनने वाले हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्ची मारकर कि आज के दिन में हुआ क्या था. बैक इन 1776 द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस सेड बाय बाय यूनाइटेड कॉलोनीज एंड हेलो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बेसिकली द ओरिजिनल ब्रांड अपग्रेड यहीं पर हुआ था. देन 1850 में कैलिफोर्निया ऑफिशियली ज्वाइंड एज द 31st स्टेट. And history was made. 1948 mein North Korea formally declared itself a nation. Then 1956 aaya, Elvis Presley danced on the Ed Sullivan show for the very first time and broke the internet. Well, much before the internet ever existed. Moving to 1971, the famous Attica prison uprising kicked off in New York. 1976 mein Chinese leader Mao Zedong passed away at the age of 82. So inme se kaun sa moment tumhara जॉ ड्रॉप करके गया है. जल्दी से स्लाइड इन टू माई DMs @ मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS, और मुझे बताओ तुम्हारा क्या जवाब है. व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
8: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
9: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
10: क्या आपको health insurance, Medicare या government assistance programs को लेकर कोई सवाल है? तो United Healthcare proudly announce करता है हमारा नया Edison Asian Resource Center की opening.
11: ये center conveniently located है 561 US Highway 1 Edison, Wick Shopping Mall के अंदर.
10: यहाँ आपको अपने healthcare benefits और coverage ऑप्शन समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
12: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
0: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
14: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
0: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
14: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
15: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: गाना हॉट है। ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट।
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels, best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर

0: कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है, हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज, समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
5: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the queen of pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
6: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
11: किसका है ये
12: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
13: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
14: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
13: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
15: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
16: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
15: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
17: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
18: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
19: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
20: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
19: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
20: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
19: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
21: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
22: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
23: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अब वेदर बेस्टी आ चुकी है बताने के लिए कि आज का वेदर का हालचाल क्या है। सो लिसन अप, वी've गॉट जीरो रेनफॉल इन द लास्ट 24 आवर्स एंड गेस व्हाट, एब्सोल्युटली जीरो प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स टू। यानी कि आज रेन जैकेट्स, अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स कैन स्टे इन द क्लोजेट। राइट नाउ इट्स अराउंड 65 डिग्रीज फारेनहाइट एंड मोस्टली क्लियर, लेकिन कीप योर आईज on the sky because between 4 to 9 p.m. it's bringing some cloudy drama. So before settling into your partly cloudy vibes at 9, aaj ka temperature swing karega from 63 degrees to a warm 86 degrees Fahrenheit, though it'll feel like 64 degrees se lekar 85 degrees Fahrenheit ke beech mein. Basically, aaj ka high temperature is pretty much matching yesterday's heat. So, obviously, you survived yesterday. Aaj ka din bhi achha hi jaane wala hai. But before you head out, let me remind you, layer ke player bankar bahar nikalna, kyunki temperature bahut fluctuate karne wala hai. Aur saath saath mein, dher sara paani peene ki zarurat hai for that glass skin that you wish for and wear your sun protection SPF 50++++ ke saath wala. Aur abhi, mirchi ko apne saath banaye rakho. Main bolo to Priscilla tumhare saath hu hi. Aane wale hai kuch mirchi dar bangers. तब तक तुम मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है MIRCHIPRIS, दैट्स मिर्ची प्रिज, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। एंड अभी बॉलीवुड के हिट्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci. Iskaba la puskaba la sakaba la. Burga, burga, burga. La virtua la burga. Mirci burga.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी
2: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आके देख।

0: से ही बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
0: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो मतलब ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब नहीं
1: नहीं
0: नहीं
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे हुए।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: नहीं सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्लो में, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
7: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा, कॉल 9549188589।
8: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
9: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
8: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
10: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
14: to aaiye, fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
13: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
14: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
15: Famous Indian astrologer, Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
18: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
19: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. Welcome back to Mirchi Mornings. Main hoon tumhari favorite radio bestie, Priscilla. And listen to this sci-fi madness. Chinese tech firm XPeng just launched an automated factory where humanoid robots are literally assembling other humanoid robots. On the assembly line, their flagship robot named Iron assembled itself and walked right off the factory floor without any human helping it. मतलब कि जीरो ह्यूमन स्टार्टअप हेल्प. ऑनेस्टली यार, दिस इज एवरी देसी पेरेंट्स एब्सोल्यूट ड्रीम. अ किड दैट गेट्स अप, गेट्स रेडी एंड गोज टू वर्क विदाउट बीइंग येल्ड एट 50 टाइम्स. दो XPeng इज कीपिंग द टोटल रोबोट काउंट टॉप सीक्रेट, वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, द फ्यूचर इज हियर पीपल, द फ्यूचर इज हियर. अब ये बताओ, अगर तुम्हारे पास एक पर्सनल ह्यूमनॉइड रोबोट होता, व्हाट्स द फर्स्ट देसी चोर तुम उसे असाइन करते? राउंड रोटी बनाने का या बर्तन धुलवाने का? स्लाइड इनटू माय डीएम्स ऑन इंस्टा एंड एक्स और मुझे बताओ क्या करते तुम. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपनी आवाज में या अपने टेक्स्ट में 9033647244 पर. अभी के भी मैसेज करो एंड कीप इट लॉक्ड राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: जन्म

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसका है ये एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
3: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
4: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी।
3: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com।
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
9: to aaiye, fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
8: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
9: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
10: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
12: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
13: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
14: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
13: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
14: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
15: देसी खाना,
16: देसी शॉपिंग,
15: देसी कल्चर।

0: और देसी एंटरटेनमेंट
1: बस एक ही डेस्टिनेशन
0: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल
2: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org
3: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
5: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop the clock. अगर आज तुम्हारा happy वाला birthday है, drop that breakfast bagel right now. You're officially sharing a birthday with some seriously cool people. One of them is a khiladi. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. And सबसे पहले happy birthday to you. ढेर सारा खाओ पियो ऐश करो और अभी September 9th born celebrities के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले वी गॉट हॉलीवुड से कॉमेडी किंग एडम सैंडलर एंड देन द स्मूथ रोम कॉम स्टार ह्यू ग्रांट, जैज आइकॉन माइकल बुबले एंड मॉडर्न फैमिली लेजेंड एरिक स्टोनस्ट्रीट, ऑस्कर नॉमिनी मिशेल विलियम्स एंड आवर वेरी ओन बॉलीवुड एक्शन किंग, एनी गेसेस, अक्षय खिलाड़ी कुमार. मतलब कि टोटल स्टार पावर है आज के दिन की बर्थडे लिस्ट में और इसी स्क्वाड में तुम भी शामिल हो. वी आर ऑल्सो ऑनरिंग द बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ लेजेंड्स who passed away, soul music icon Otis Redding and the ultimate crisp chicken mastermind himself, Colonel Harlan Sanders of KFC. So, agar aaj tumhara happy birthday hai, to dheer sara khao, piyo, aish karo, calories ko count mat karo and have the ultimate day of the year. Main ho Priscilla, tumhare saath mein mujhe shoutouts bhej sakte ho apne liye, apne friends ke liye. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033 6 4 7 2 double 4. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: अमित जेटली ऑफ साई USA इंक प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर, फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7DaysPediatrics.com. Visit 7DaysPediatrics.com or call 732-548-3210.
9: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
10: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
9: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Hislin.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store.

0: quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
5: Sneakers, Kanjivaram Sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. Sunne wale ho tum Mirchi par gold rate update.
2: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390. $4,390 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड में इन्वेस्ट करना है लेकिन समझ नहीं आता किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया जाए. आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड के ऊपर कितनी लेबर चार्ज ऐड हो रही है. आइए राज ज्वेल्स की डॉट टीम से कनेक्ट करें. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस, उसके ऊपर कितनी लेबर और क्या एडिशनल चार्जेस के साथ आप ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ 9 मंथ की फाइनेंसिंग में. राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर जाती है और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलते हैं. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स.com के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.

गोल्ड रेट का लेटेस्ट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. This is the last hour of Mirchi Mornings and it's time for
0: Mirchi Hour Got 3.
1: सबसे पहले टॉक अबाउट अ स्काई हाई करियर क्रैश दैट गाय हु गॉट डक्ट टेप्ड टू हिज सीट ऑन एन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट फॉर थ्रोइंग टैंट्रम्स एंड स्लर्स टर्न्स आउट ही वाज अ वीपी एट अ रियल एस्टेट फर्म एंड हिज कंपनी सॉ द वायरल वीडियो एंड हिट हिम विद अ स्विफ्ट यू आर फायर्ड. नंबर टू पर शॉकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम कनाडा. पंजाबी सुपरस्टार एमी वर्क नैरोली एस्केप्ड अनहर्ट आफ्टर अनआइडेंटिफाइड शूटर्स ओपन्ड फायर ऑन हिज कार फॉलोइंग अ कॉन्सर्ट in Abbotsford. 7 shots hit the vehicle, but thankfully Amy and his team are safe, sending a lot of strength to him. And lastly, in sports, Namandir went absolutely beast mode in the Sher-e Punjab T20 League, smashing 173 off 64 balls. He missed Chris Gayle's world record by just 2 runs. But here's the plot twist. Because it's a regional league without official list A status, the record

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. La pietra, la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं
1: है?
2: वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वाह, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
6: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
11: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
10: Wait, they can see us on Sunday?
11: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
13: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
15: You are listening to the MPZ Law Firm Show. Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
16: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
17: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે, ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ. આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
8: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
7: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના, અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી, અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર, વિસ્કાટવે, ઓન 732-357-8200. જય ગુરુદેવ.
9: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
10: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर.
9: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा. हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके. तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी.

0: बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
1: कि जसनीत नू निहाल सिंह वापस पिंड लेके आ पाएगा?
2: जे तू जसनीत नू वापस ना ना लेके आया पुत, तो मेरा भी मरी दा मुंह देखेगा।
1: कि पिंड वाले जसनीत नू वापस पिंड देख पाएंगे? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।
3: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
4: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें Miss India Bridal Store.
4: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
5: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
4: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Hislin.
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करे 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
0: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Kiska hai ye?
10: Ek awaaz, jisne romance ko ek nayi pehchan di. Ek legend, jiski melodies pichle 3 dashkon se har Hindustani ke dil mein dhadakti hain.
11: Amit Jetley of Sai USA Inc. proudly presents Sonu Nigam live in concert on his biggest tour ever.
12: Friday, 11th September, 8:30 p.m. Witness history at Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City.
11: Do not miss the greatest musical night. Tickets available at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
13: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
6: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
13: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
6: Visit today, 13.

0: 58 Oak Tree Road, Izzelin.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: Radio Mirchi, it's hot.

नीपुरी, लेट मी नो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और ड्रॉप मी अ वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप, नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। लेकिन जो भी हो यार, फैमिली फोटोशूट है बड़ा क्यूट, एंड उससे भी ज्यादा क्यूट है उनकी बेबी डॉल दुआ। आई मीन दे लुक स्टनिंग ऑल ऑफ देम, एंड विद दैट I'm out of here. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। अब मेरे जाने का टाइम है, टाटा बाय बाय फ्रॉम माई साइड, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर, तब तक के लिए यू बी गुड एंड मिर्ची को सुनते रहो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: समय रैना फैंस कृपया ध्यान दें।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आई एम 110% श्योर इस इंसान का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे, आपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दिए होंगे, तो प्लीज सुन भी लो कि क्या ही चर्चा करने वाली हूँ। सो आपको समय का वो कमबैक एक्ट तो याद होगा, स्टिल अलाइव एंड स्पेशली द मैन आउट देयर जो समय के उस सेट के बाद अपने पापा को आई लव यू बोल रहे थे। वेल, आपके लिए डायरेक्टर हरीश व्यास जो हैं वो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं और इसका नाम है हरिओम। नहीं नहीं, नाम पे मत जाइएगा, कोई भक्ति वाली मूवी नहीं है ये। बट इस फिल्म का इमोशनल कोर है द टाइमलेस टग ऑफ वॉर जो फादर सन के इस ओल्डेस्ट राइवलरी में नजर आती है। इनफैक्ट इस कहानी के जरिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश भी की गई है कि भाई कैसा होता अगर हम अपने पापा को बता पाते कि भाई हम उनसे कितना प्यार करते हैं एंड वाइस वर्सा। सो द बैक स्टोरी इज दैट इस फिल्म के साथ डायरेक्टर हरीश व्यास अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। सो उन्होंने अपना फीचर फिल्म डेब्यू किया था विद अ मूवी अंग्रेजी में कहते हैं, और इस फिल्म में संजय मिश्रा के साथ साथ पंकज त्रिपाठी, एकावली खन्ना और अंशुमन झा भी नजर आए थे, जहां एक रिलेशनशिप में आई लव यू बोलने की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया गया। कई दफा हमने देखा है कि रिलेशनशिप को अगर काफी टाइम हो जाता है तो लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलना भूल जाते हैं, ये सोच के कि यार उसको तो समझ में आता ही है क्या है क्या नहीं है। बट एक्चुअली दैट मूवी रिमाइंड्स यू कि प्यार को सिर्फ अज्यूम नहीं किया जा सकता, इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। और उसके बाद आई थी उनकी दूसरी फिल्म दैट इज हम भी अकेले एंड तुम भी अकेले, जिसका बैकड्रॉप भी कुछ ऐसा सा ही था। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अच्छी स्टोरी टेलिंग पसंद है, अगर आप ऐसे टॉपिक्स को एक्चुअल में एक्नॉलेज करते हैं, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच हरिओम जो रिलीज हो रही है ऑन द 18th of September, वो भी थिएटर्स में। एंड सीरियसली यार, इट्स हाई टाइम जब हम अच्छे डायरेक्शन, अच्छी कहानी को अप्रिशिएट करना शुरू करें। ये नहीं कि बस बड़े नाम हो मूवी में, बड़ा बजट हो तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। बाकी तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. Burka. Navidva la burka. Milchi burka.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप, गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
8: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग.
9: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रिजेक्टेड बाई टॉक्सिक, डिलेड बाई स्पाइडरमैन, और शुरुआत हुई थी इस फिल्म को लेकर एक बोगस ऑफर के साथ, बट आज इसी मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। बात कर रही हूँ हनुमान अंश की। हाँ जी, जो फिल्म तैयार हुई 2 करोड़ के बजट पे, बट आज इस फिल्म ने अबाउट 80 करोड़ तक कमा लिए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कितना पावरफुल हो सकता है यार, क्योंकि ये 5th वीकेंड रन चल रहा है इस मूवी का, और ऐसा ही रहा तो इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड यू, द मूवी रिलीज्ड ऑन द 31st of July। अगर अभी तक आपने नहीं देखी, देन ऑफ कोर्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से ही देखने चले जाओ कम से कम। भाई, ये नाम को लेकर कितना बवाल होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं शेक्सपियर अंकल ने बोला है व्हाट्स देयर इन नेम। एक्चुअली क्या हुआ, 4th of September को रिलीज हुई अर्शद वारसी की फिल्म जीवन बीमा योजना। सॉरी, ये तो पहले उसका नाम था, नाम चेंज करके किया गया जीवन या बीमा कौन। सो बेसिकली इस नाम के ऊपर इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्योंकि CBFC ने बोला कि भाई फिल्म का नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना से काफी सिमिलर है, तो इसको तो चेंज किया जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, मूवी में कुछ ऑब्सीन विजुअल्स और डायलॉग्स भी हटाए गए। माइंड यू, इट इज अ क्वर्की कॉमेडी जो 1 घंटे 59 मिनट्स के रन टाइम के साथ आई है, जिसमें अर्शद वारसी के अलावा संजीदा शेख और विजय राज जैसे और भी एक्टर्स हैं। हरीश व्यास डायरेक्टोरियल इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि इसमें ना फादर सन के अल्टीमेट कॉम्बो को दिखाया गया है। हरीश व्यास की इस फिल्म का नाम है ओम का हरी, जिसका ट्रेलर इज आउट, और अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो प्लीज देखिए ये फिल्म। इट इज अ स्मॉल बजटेड मूवी जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम नहीं है, बाकी ट्रेलर देख के मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स जो आ रही है 18th of September को। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। सो टू ऑल द समय राणा फैंस आउट देयर, अगर आपने उनके कमबैक वाले एपिसोड को देखने के बाद अपने पापा को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर दी थी, then I guess it's high time कि आप ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ.
6: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
7: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
8: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
13: मोदक से लेकर लड्डू तक, इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
14: खेलो मगर प्यार से.
15: श्रुति श्रुति
14: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ. आप कहाँ जा रहे हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. एंड यस, लाइक एवरी डे इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म जी. सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ. तो आज मेरे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी. कैसे हैं सर?
16: बढ़िया, बताइए.
14: ओके, मुझे तो डर लग रहा है आपके साथ ये गेम खेलने में. पता चला आपने एक बार में ही खत्म कर दिया गेम मेरा.
16: नहीं,
14: मुझे ये बात बोलनी चाहिए आपको, आप छोड़ते ही नहीं, आपके अंदर का फिल्मची जो है ना एकदम बाहर ही आ जाता है. लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज कैसा होता है.
16: देखते हैं
14: जी. करीना और शाहिद की लास्ट फिल्म एक साथ,
16: उड़ता पंजाब.
14: उड़ता पंजाब में हॉकी प्लेयर कौन है?
16: आलिया भट्ट.
14: आलिया भट्ट किस फिल्म में तमिल स्टूडेंट बनी है?
16: टू स्टेट्स, अर्जुन कपूर के साथ आई थी.
14: क्या बात है. टू स्टेट्स में मेल लीड कौन है?
16: अर्जुन कपूर.
14: अर्जुन कपूर की फिल्म जिसमें वो हाउस हस्बैंड बने हैं,
16: की एंड का
14: में किया साहनी का रोल किसने प्ले किया है?
16: करीना कपूर.
14: करीना कपूर किस फिल्म में भैया जी की सेक्रेटरी बनी है?
16: टशन.
14: बिल्कुल टशन. ओके, आगे

0: पूछती हूँ, फिल्म में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
1: अक्षय कुमार।
0: नहीं सर, यहाँ पे आप गलत हो गए, यहाँ पे चेन ब्रेक करूंगी मैं।
1: करो करो करो करो।
0: बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए ये टैग तो बनता है।
2: मिर्ची फिल्म ची।
0: हाँ जी, तो आप फिलहाल जो मुझे सुन रहे हैं, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। गेम कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए, बाकी आई टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है। मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: फूड
6: यस,
5: शॉपिंग
6: यस,
5: एंटरटेनमेंट
6: डबल यस,
5: और हेल्थ फेयर
6: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर September 12th or 13th श्री कृष्णा मंदिर मॉडर्नविल।
7: फॉर वेंडर्स एंड इंफॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
8: किसका है ये तू?
9: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
10: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
11: फ्राइडे 11th September 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
10: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
12: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
13: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
12: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
14: Yeah, meethi mirchi, brighten up your day, we will find a way. On meethi mirchi, aha,
15: mirchi pe khela ho be.
16: Shruti, Shruti,
17: main to badi filmi hu.
18: एक्सक्यूज मी, यहाँ इस खेल में हम मिर्ची फिलमची ढूंढते हैं, आप अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर ना दौड़ाएं। हाय, सो बेसिकली इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिलमची। इस गेम की शुरुआत हमने की थी दीपक जी के साथ और अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं हार्दिक। तो हार्दिक कैसे हो आप?
19: मस्त हूँ, आप बताओ?
18: अरे वाह, मस्त सुन के मैं भी मस्त हूँ। अब तो द क्वेश्चन वॉज की फिल्म टशन में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
19: अनिल कपूर।
18: वेरी नाइस। अनिल कपूर की फिल्म जो टोटली क्रूज पे शूट की गई है,
19: दिल धड़कने दो।
18: वाओ, दिल धड़कने दो में रणवीर सिंह की बहन कौन बनी है?
19: प्रियंका चोपड़ा।
18: प्रियंका चोपड़ा का आइटम सॉन्ग किस मूवी में है जिसमें वो रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगाम बोलती है?
19: रामलीला।
18: वेरी नाइस। गोलियों की रासलीला रामलीला में लीला का रोल किसने प्ले किया है?
19: दीपिका।
18: दीपिका किस फिल्म में झूमर के नीचे मरती है?
19: ओम शांति ओम।
18: बहुत बढ़िया। ओम शांति ओम में दीपिका को झूमर के नीचे मारता कौन है?
19: अर्जुन रामपाल अपने मेजर इकबाल।
18: मेरा अगला सवाल यही है, अर्जुन रामपाल ISI एजेंट मेजर इकबाल किस फिल्म में बने?
19: धुरंधर।
18: धुरंधर में हमजा को अंडरकवर एजेंट कौन बनाता है?
19: आर माधवन।
18: बहुत बढ़िया। आर माधवन को फोटोग्राफी का शौक किस फिल्म में?
19: थ्री इडियट्स ऑफ कोर्स।
18: थ्री इडियट्स में रैंचो कौन है?
19: आमिर खान।
18: आमिर खान किस फिल्म में पूरे इंडिया में भागते रहते हैं?
19: पूरे इंडिया में भागते रहते हैं।
18: हाँ जी।
19: लाल सिंह चड्ढा।

0: बहुत ही उम्दा। इसी के साथ आपको भी ये टैग बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: वैसे पूरी दुनिया एक चीज से भागती है, वो है शादी, और इस चीज से आमिर खान तो बिल्कुल नहीं भागते यार। तभी तो 5th ऑफ जुलाई को चौथी बार परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विशिंग हिम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अहेड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।
2: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स ऑल।

0: तो बीते जमाने की बात है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब हिंदी सिनेमा में अगर कोई बड़े बजट की फिल्म होती थी तो ही वो बड़ी कमाई कर पाती थी। बट थैंकफुली गॉन आर द डेज, क्योंकि अब रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि स्मॉल बजटेड फिल्म में भी जो वेल रिटन हो, यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ हो, हैव मैनेज्ड टू कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस एंड हेंस उनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस भी अमेजिंग रहा है। एंड यस, आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं लो बजटेड बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों की बात कर रही हूँ। वेल लिस्ट में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म स्त्री, विच वॉज अ हॉरर कॉमेडी डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, स्टारिंग राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी जैसे अमेजिंग एक्टर्स। बाकी इट वॉज द फर्स्ट मूवी इन द कैटेगरी ऑफ हॉरर कॉमेडी जो 18 दिनों में 100 करोड़ क्लब में पहुंच गई थी। हां जी, एंड यू वोंट बिलीव, इस फिल्म को बनाने में सिर्फ 20 करोड़ लगे थे। इम्प्रेसिव राइट? अब भैया यूनिक स्टोरी लाइन हो, वैसे ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी हाँ, एंड उसके साथ फाइन परफॉर्मेंसेस हो तो जनता तो अपना प्यार देगी ही। खैर, मेरी इस लिस्ट में और भी कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर।

0: बेहतरीन आप देखिए, एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो है सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब नहीं।
1: मैं कल को अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: क्या चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी, हेलो ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Jai Gurudev. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
7: 13 सितंबर रविवार
6: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
8: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: Inefficient,
10: very complex,
11: clumsy और
12: confusion ही confusion.
13: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
16: You are listening to the NPZ Law Firm Show. Immigration Vows, Visa Serve Knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
17: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
18: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
17: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1.

0: ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। पैसों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब हिंदी सिनेमा में अगर हम देखें तो जिस फिल्म में ज़्यादा पैसे लगा करते थे वही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया करती थी। हाँ, ये एक पैटर्न चलता आ रहा था, बट थैंकफुली इन द रीसेंट टाइम्स थिंग्स हैव चेंज्ड, क्योंकि वेल रिटन यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को तवज्जो मिलने लगी और ऑडियंस का इंटरेस्ट कॉन्टेंट पे चला गया। और इसीलिए आज पाँच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग बॉक्स ऑफिस परफॉर्मर लो बजटेड फिल्मों की बात कर रही हूँ। लिस्ट में नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई हो, जो साल 2018 में आई थी, विच वाज अ कॉमेडी ड्रामा डायरेक्टेड बाय अमित शर्मा, स्टारिंग आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव, सुरेखा सिकरी और शिवा चड्ढा जैसे सुपर परफॉर्मर्स। प्लॉटलाइन कुछ ऐसा सा है कि मम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। भाई साहब, एक तो अमेजिंग परफॉर्मेंस, ऊपर से जो डायलॉग्स हैं, ओहो चुम्मेश्वरी। बाकी टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ द फिल्म, ये 30 करोड़ के बजट में बनी थी, बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 132.65 करोड़, हेंस प्रूव्ड दैट कंटेंट इज द बाप। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स विद फीमेल लीड जो 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी। आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म राजी, जो साल 2018 में आई थी, मेघना गुलजार डायरेक्टोरियल, स्टारिंग आलिया भट्ट, विकी कौशल, अमृता खनवलकर, जयदीप अहलावत, सोनी रजदान जैसे अमेजिंग एक्टर्स। भाई एक तो प्लॉट इस मूवी का, ऊपर से हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंसेस, एंड टॉकिंग अबाउट द बजट ऑफ द फिल्म, ये 40 करोड़ में बनी थी बट इसने कमाई की 158.77 करोड़। इसलिए बोलते हैं भाई बजट कितना बड़ा है वो फिल्म को एक परफॉर्मर नहीं बनाता, rather it is the content. Khair, meri is list mein aur bhi to filmon ki baat baki hai, but all of that in a while. Tab tak ke liye you enjoy the songs right here on Mirchi with this ladki badi filmy, it's hot. Yeah.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
3: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
2: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
4: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन द रेवोल्यूशन टूर फ्राइडे सितंबर 11th एट हार्ड रॉक लाइव अटलांटिक सिटी। बुक नाउ एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
5: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज्ड टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
6: डोंट वरी, आई एम कांटेक्टिंग 7 डेज पीडियाट्रिक्स। दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
5: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
6: वी आर ओपन 7 डेज अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंड areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
13: Yeah, Meethi Mirchi, brighten up your day, we will find a way. On Meethi Mirchi, aha.
14: द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा है कंटेंट।
15: श्रुति श्रुति
14: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। अब देखो, एक टाइम था जब हिंदी सिनेमा में फिल्में ऐसी बनती थी जिनका बजट अगर बड़ा हुआ तो वो बॉक्स ऑफिस पे भी बड़ा परफॉर्म करते थे। बट नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, क्योंकि अभी कंटेंट और परफॉर्मेंस, इन दोनों का अमैल्गमेशन अगर मस्त हो जाए तो ऑडियंस खुश हो जाती है और बॉक्स ऑफिस नंबर्स अपने आप बढ़ जाते हैं। विलास पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही लो बजट हाई परफॉर्मिंग फिल्मों की बात कर रही हूं। जिस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म अंधाधुन, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। अ ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर डायरेक्टेड बाय श्रीराम राघवन एंड इट स्टार्ड आयुष्मान खुराना, श्रीराम राघवन हिमसेल्फ, तबू, राधिका आप्टे एंड मानव विज जैसे अमेजिंग एक्टर्स। बट सोने पे सुहागा वाली बात यह हो गई कि 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने एक तो तबू और आयुष्मान खुराना को एकदम डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट अवतार में हमें दिखाया, वहीं दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने 72.37 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली। मूविंग ऑन, नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म हिंदी मीडियम, जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। अ कॉमेडी ड्रामा डायरेक्टेड बाय साकेत चौधरी, स्टारिंग इरफान खान, सबा कमर, दीपक डोबरियाल और अमृता सिंह जैसे अमेजिंग एक्टर्स। सीरियसली, ये कॉमेडी ड्रामा जब आई थी, इट वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द मिड्स ऑफ कमर्शियल पॉट बॉयलर्स, जिनकी कहानियां बिल्कुल एक सी ही रिपीटेटिव। इनफैक्ट अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो 23 करोड़ के

0: बजट में बनी थी ये फिल्म, विच पीपल फाउंड हिलेरियसली रिलेटेबल एंड इट मैनेज टू अर्न मोर देन 70 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस. इसीलिए, बस इसीलिए मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि भैया द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा है कॉन्टेंट. खैर, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे मिलूंगी आपको. इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
1: 20 minutes of back-to-back music brought to you by RK Jewels. Best quality, best price. Only on Radio Mirchi 92.7 FM and 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
0: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
5: किसका है ये
6: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
7: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
8: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
7: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रिजेक्टेड बाई टॉक्सिक, डिलेड बाई स्पाइडरमैन, और शुरुआत हुई थी इस फिल्म को लेकर एक बोगस ऑफर के साथ, बट आज इसी मूवी ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। बात कर रही हूँ हनुमान अंश की। हाँ जी, जो फिल्म तैयार हुई 2 करोड़ के बजट पे, बट आज इस फिल्म ने अबाउट 80 करोड़ तक कमा लिए हैं ऑन द बॉक्स ऑफिस। इसी को बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, कितना पावरफुल हो सकता है यार, क्योंकि ये 5th वीकेंड रन चल रहा है इस मूवी का, और ऐसा ही रहा तो इसे 100 करोड़ क्लब में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड यू, द मूवी रिलीज ऑन द 31st of July, अगर अभी तक आपने नहीं देखी देन ऑफ कोर्स इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की वजह से ही देखने चले जाओ कम से कम। भाई, ये नाम को लेकर कितना बवाल होता है ना हमारे यहाँ, लेकिन सब भूल जाते हैं शेक्सपियर अंकल ने बोला है व्हाट्स देयर इन नेम। एक्चुअली क्या हुआ, 4th of September को रिलीज हुई अर्शद वारसी की फिल्म जीवन बीमा योजना, ये तो पहले उसका नाम था, नाम चेंज करके किया गया जीवन या बीमा कौन। सो बेसिकली इस नाम के ऊपर इसलिए कॉन्ट्रोवर्सी हुई क्योंकि CBFC ने बोला कि भाई फिल्म का नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री की जीवन ज्योति बीमा योजना से काफी सिमिलर है, तो इसको तो चेंज किया जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, मूवी में कुछ ऑब्सीन विजुअल्स और डायलॉग्स भी हटाए गए। माइंड यू, इट इज अ क्वर्की कॉमेडी जो 1 घंटे 59 मिनट्स के रन टाइम के साथ आई है, जिसमें अर्शद वारसी के अलावा संजीदा शेख और विजय राज जैसे और भी एक्टर्स हैं। हरीश व्यास डायरेक्टोरियल इस फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि इसमें ना फादर सन के अल्टीमेट कॉम्बो को दिखाया गया है। हरीश व्यास की इस फिल्म का नाम है ओम का हरी, जिसका ट्रेलर इज आउट, और अगर आपको एक ओवरव्यू लेना है तो प्लीज देखिए ये फिल्म। इट इज अ स्मॉल बजटेड मूवी जिसमें बहुत बड़े बड़े सितारों के नाम नहीं है, बाकी ट्रेलर देखे मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूँ टू वॉच द मूवी इन थिएटर्स जो आ रही है 18th of September को। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। सो टू ऑल द समय राणा फैंस आउट देयर, अगर आपने उनके कमबैक वाले एपिसोड को देखने के बाद अपने पापा को आई लव यू बोलने की शुरुआत कर दी थी, then I guess it's high time कि आप ऐसी फिल्मों को भी सपोर्ट करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची,
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

महमूद साहब पूरी रात किशोरदा के घर के सामने बैठे रहे पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। उनके गार्ड ने ना जाकर के किशोरदा को बताया कि अरे महमूद रात भर यहीं बैठे रहे। वेल, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म पड़ोसन। अब हुआ ये कि पड़ोसन का फेवरेट कैरेक्टर, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो विद्यापीठ ही होगा, यानी किशोरदा का प्लेट कैरेक्टर। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि किशोरदा एट दैट टाइम वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग अ फिल्म, मतलब उनको एक्टिंग करनी ही नहीं थी। लेकिन महमूद साहब जो ये फिल्म बना रहे थे उन्हें पता था कि इस जोवियल कैरेक्टर में अगर कोई फिट हो सकता है तो किशोरदा है। किशोरदा को वो मनाने गए लेकिन किशोरदा ने साफ मना कर दिया। तो

महमूद जी उनके घर के सामने डेरा डाल के बैठ गए कि जब तक वहां नहीं कहेंगे वो वहां से नहीं हिलेंगे। सो किशोरदा ने ये फिल्म की, एंड गेस व्हाट, किशोरदा इतने कमाल थे कि जब फिल्म के रशेस सुनील दत्त साहब जो कि फिल्म के मेन लीड थे उन्होंने देखे तो ही वॉज वेरी वॉरिड कि ये क्या हुआ है, ये तो किशोरदा के नाम की फिल्म हो जाएगी। तो उन्होंने और महमूद साहब ने किशोरदा के कुछ कुछ सीन्स एक्चुअली वे चॉप भी किए, एंड ये बात किशोरदा को पता थी एंड ही डिड नॉट माइंड क्योंकि उनका प्यार तो बस गाना था। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। आज और किस किस के किस्से लेकर के आई हूँ सब बताऊंगी एक एक करके, जल्दी से वापस आओ, ओनली ऑन मिर्ची 93.5।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: मुकेश जी।
4: कौन
5: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
4: नहीं हो पाया भाई?
5: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
4: हाँ जी? नहीं हो पाया
5: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
4: हाँ
5: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
4: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक ही क्या है ये?
5: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
4: क्या समझ रहे हो भाई।
5: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
4: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
5: सर? वो
4: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये हो पाया वो नहीं हो पाया।
5: नहीं सर
4: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
5: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
4: क्यों नहीं हो पाया
5: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
4: है?
5: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
4: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
5: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
4: क्या करा दू
5: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
4: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
5: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
4: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
5: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया, उसमें ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
4: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
5: अच्छा सर,
4: मुझे चाहिए अपनी वापस।
5: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
4: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
5: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
6: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
4: तो जान निकाल दी हमारी।
6: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
4: कुकड़ू-कू।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन

0: Energy, it's hot.
1: Hip o'clock.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
5: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
4: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
6: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
7: अपने घर में तो

0: 732-339-3155. That is 732-339-3155.
1: Food?
2: Yes.
1: Shopping?
2: Yes.
1: Entertainment?
2: Double yes.
1: Or health fair?
2: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
3: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
4: RK Jewels se khareediye diamond jewelry. India wale price mein. Aur pay kijiye easy monthly installments mein. Only at RK Jewels Islam. Best quality, best price.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
6: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
6: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका ना हमेशा से अपनी फिल्म में एक काना खुद पे ऐसा जरूर पिक्चराइज कराते थे जो कि किशोर दा ने उनके लिए प्लेबैक किया और पंचम दा ने उनके लिए यू नो कंपोज किया हो, जिसमें वो बस हरफन मौला की तरह जिंदगी को एंजॉय करते हुए आगे चले जा रहे हैं, जैसे कि ये गाना फ्रॉम द फिल्म मेरे जीवन साथी। वेल, अब इस फिल्म को बनाने में पता है क्या हो रहा था, क्योंकि काका यानी राजेश खन्ना जब किसी फिल्म में आ जाते थे तो भाई सुपरस्टार थे और उनका जो पैसा होता था वो फिल्म के बजट को ऑलरेडी शूट कर देता था। ऐसे में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स क्या करते थे कि वो हीरोइंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते थे। तो ये जो फिल्म थी, दिस वॉज ऑफर्ड टू साधना जी, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, वो भी टॉप क्लास हीरोइंस, उनके पैसे जो थे वो कम ही नहीं हो रहे थे, दे आस्क फॉर अच्छा खासा पैसा। अब भाई प्रोड्यूसर थोड़ा परेशान हुए कि मैं दो दो स्टार्स को एक साथ कैसे फिट करूं, तो ऐसे में राजेश खन्ना ने उनको सजेस्ट किया तनुजा जी। एंड तनुजा जी जो उस समय एक्चुअली में ए ग्रेड फिल्मों को देखना चाह रही थी, उसमें काम करना चाह रही थी बड़े डायरेक्टर्स और बड़े एक्टर्स के साथ, शी सेड यस एंड दिस फिल्म मेरे जीवन साथी वॉज एक्चुअली अ हिट। पुरानी जींस पे इसी फिल्म का गाना मैंने आपको सुनाया था, अब कौन आ रहा है, आहा मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: जय गुरुदेव। अवसर आवीने उभो छे आंगणे, चलो भेगा मळी गणेशजी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मां जोडायो, जेमां
6: 13 सप्टेम्बर रविवार
5: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
9: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
10: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
11: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
12: संडे सितंबर 27th 4 PM, जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना ऋषिकेश दा की एक टेली सीरीज आई थी जिसका नाम था तलाश. ओके, 90s में टेलीविजन सीरियल आया करता था और ये गाने की लाइन उसमें यूज हुई थी. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ हेमंत कुमार का ये गाना जो कि उन्होंने खामोशी फिल्म के लिए गाया है और ना कंपोज भी उन्होंने ही किया था. अब ऋषिकेश दा की एक टेली सीरीज जिसका नाम था तलाश, उसमें इस गाने की लाइन को यूज किया गया था. जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है. वेल, दिस इज फ्रॉम द फिल्म खामोशी जिसमें थे राजेश खन्ना और वहीदा रहमान. एक्चुअली में डायरेक्टर साहब तो लेना चाहते थे देव आनंद जी को, लेकिन वहीदा रहमान ने काका को सजेस्ट किया था और ये फिल्म अच्छी खासी पॉपुलर हुई थी. और भी क्या क्या किस्से उस जमाने के लेकर के आई हूँ एक साथ थोड़ी ना बताऊंगी. गाने सुनकर के वापस आओ. दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है।

0: सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराजन तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखा, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: जीतुराज। Only on Mirchi, it's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
11: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein aur pay kijiye easy monthly installments mein. Only at RK Jewels Islington. Best quality, best price.
12: Listener mein बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Ah,
15: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेश खन्ना और मुमताज जी की हिट जोड़ी का एक और ये खास गाना फ्रॉम देयर फिल्म आपकी कसम। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ, और जब काका पर्दे के उस पार होते थे तो उनकी आवाज पीछे से कौन बनता था? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी किशोरदा। वेल, ये फिल्म की ना एक और खास बात है, यूके में एक नया नया इंडियन थिएटर खुला था, इंडियन सिनेमा खुला था, और उसका नाम था नटराज। वहां पे पिक्चराइज यानी वहां पे दिखाने वाली ये पहली इंडियन फिल्म थी आपकी कसम। इसी फिल्म का गाना मैं लेकर के आई थी। अगला कौन सा है? हाँ, चलो किशोरदा की बात हुई है, किशोरदा का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

ये पहली फिल्म थी जीतू जी और गुलजार साहब के एक साथ। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म परिचय। नाउ दिस वाज द फर्स्ट फिल्म इन द सीरीज ऑफ थ्री फिल्म्स जो कि गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी और जितेंद्र जी पे पिक्चराइज थी। द अदर टू फिल्म्स जो थी वो थी एक खुशबू और दूसरी थी किनारा। दोनों में इतनी अच्छी जमी कि दोनों ने तीन फिल्मों में एक साथ काम किया, यानी इन तीनों फिल्मों में गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया और जीतू जी ने उसमें काम किया। वैसे बाय द वे जो अदर टू फिल्म्स थी यानी खुशबू एंड किनारा, ये दोनों जीतू जी के ही बैनर के अंडर बनी थी और उसका नाम तब था तिरुपति पिक्चर्स। और इन तीनों में ऑफ कोर्स आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक एंड गुलजार साहब के लिरिक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो। बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस कौन सा लगाया नहीं?
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब नहीं
3: नहीं नहीं
2: मैं कल को फोटो
3: खींचे। अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहु उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
9: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
13: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
14: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
15: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
16: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
18: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में, और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉल।

0: इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इज़लिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: आओ बच्चों आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

लेकिन उन्होंने इतने सारे जो गाने गाए ना, ओ साथी रे, आज रपट जाए तो, नीला आसमास हो गया, मच गया शोर, एंड सो मेनी ऑफ देम, अमर अकबर एंथनी, सो मेनी ऑफ देम, उनमें यानी इस टैलेंट में, उनके गाने के टैलेंट में ये गाना पहला गाना था, मेरे पास आओ. राजेश रोशन ने कंपोज किया था एंड ही एक्चुअली वेंट एंड सजेस्टेड दिस टू बच्चन साहब कि इस गाने में मुझे आपकी आवाज़ की ज़रूरत है. अगर शायद राजेश रोशन ना होते और बच्चन साहब को कन्विंस ना करते तो मैं बच्चन साहब की आवाज़ इतने ढेर सारे गानों में मिलती ही नहीं. और राइट, और कौन कौन सी बातें हैं उस जमाने के, एक एक करके बताऊंगी. कम राइट बैक, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: निहाल सिंह नू बंगाली कुड़ी नाल किवें होया प्यार?
4: यू बॉयफ्रेंड?
5: नो बॉयफ्रेंड.
4: हसीम, नो गर्लफ्रेंड.
3: कि निहाल बंगाली कुड़ी दी सच्चाई फड़ पाएगा? वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर स्टारिंग गिप्पी गरेवाल शहनाज गिल डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल रवनीत कौर गरेवाल श्री

0: कांत महोता एंड महेंद्र सोनी।
1: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
5: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
4: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
6: आरके ज्वेल से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इजलिन। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ये गाना तो पंचम दा ने इस फिल्म के लिए बनाया ही नहीं था। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना था, दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैंने पूछा चांद से, आरडी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, रफी साहब ने गाया। नाउ दिस फिल्म के लिए गाना बना ही नहीं था। अब्दुल्ला से बहुत पहले रफी साहब और पंचम दा ने गाना बना करके रखा था, लेकिन एक बार रफी साहब के घर पे संजय खान ने गाना सुना। गाना क्या है, इस गाने की धुन सुनी एंड ही लव्ड इट इंस्टेंटली एंड ही सेड कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ अब्दुल्ला, उसमें इस गाने को मैं डेफिनेटली जगह देना चाहता हूँ। फिर ईयर्स लेटर, क्योंकि इस गाने को बने हुए ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस के साथ रफ़ी साहब ने गाना गाया और ऑफकोर्स पंचम दा की कॉम्पोजिशन है और इसको अब्दुल्ला में रखा गया। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स दिस इज, मैंने पूछा चांद से। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे आगे साथ, और भी किस्से हैं एक एक करके सुनाती रहूँगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: किसका है ये तू?
0: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
7: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
8: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
7: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: यू आर लिसनिंग टू द एमपीजी लॉ फर्म शो। Immigration woes, visa serve knows. US and Canadian immigration and nationality lawyers who speak your language.
11: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein aur pay kijiye easy monthly installments mein only at RK Jewels Islam. Best quality, best price.
12: Tera kya hoga Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
12: Ab mirchi kha.
14: Radio Mirchi. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

लेट लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार जी के पास ना जनरली हर फिल्म डायरेक्टर जाता था अपनी फिल्म के रशेस दिखाने और उनसे सजेशन भी लेता था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म कलाकार, इसमें थे कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी जी। अच्छा, जब मनोज कुमार जी को ये फिल्म के रशेस दिखाए गए ना प्री लॉन्च से भी पहले, तो मनोज कुमार जी ने इस फिल्म में कुछ चेंजेस बताए कि फिल्म के कैरेक्टर को सिंपथी नहीं मिलेगी अगर वो ऑडियंस को ऐसे दिखेगा, बिकॉज फिल्म में कुणाल गोस्वामी श्रीदेवी के साथ बहुत रफली बिहेव करता है एंड लेटर ऑन पता चलता है ओ ही वॉज डायग्नोज विथ कैंसर। तो मनोज कुमार जी ने ये कहा था कि ये बात पहले ही बता दो, इंटरवल से पहले बता दो, सो दैट ऑडियंस को ये रफ बिहेवियर समझ में आए और वो कैरेक्टर के साथ सिंपथाइज कर पाए।

पर ऐसा डायरेक्टर साहब ने किया नहीं और उनका मानना था कि इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। ऐसे बड़े सारे किस्से ना मुझे पता करके आने में आपके लिए बहुत मज़ा आती है। सो दैट यहाँ मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं, उस जमाने के गाने और बस उस जमाने की बातें। सो कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath on Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest countdown of the week. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 गानों में दो नई एंट्रीज हैं इस हफ्ते. हम अपना 90s एंड 2000s का कैसेट क्लासिक भी आपके लिए प्ले करने वाले हैं. ऑल दिस एंड मोर एट RJ Kanika ऑन Instagram पर आकर स्टे कनेक्टेड विद मी. कोई गाना बताना है, सजेशन है, बिंदास आके हिट मी अप. शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, बंजारी द आर्टिस्ट का गाना. गाने का नाम है बरसात. दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, हितेन बादशाह का गाना फीचरिंग शर्वी यादव. गाने का नाम ही है बैंगर. दिस न्यू बादशाह ट्रैक डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. वती का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: It's your boy.
1: बादशाह की आवाज फीचरिंग शर्वी यादव, हितेन का प्रोडक्शन, गाने का नाम ही है बैंगर। दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। एक गाने को बैंगर से वोकलिस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनाता है अपनी बीट से। इट्स टाइम टू मीट दिस बैंगर प्रोड्यूसर।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
1: Hello, hello. This is the Ghana Indie Top 10. Baddi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par. Follow kare. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Pichle 6 saal se jitne gaane Badshah ke is show par debut karte hain, jo main aur aap sunna band nahi kar paate hain, un gaanon mein ek naam common hota hai. Wo naam hai Hiten ka. हितेन इज द सुपरस्टार प्रोड्यूसर जो बहुत रिपीटेडली बादशाह के साथ काम करने लगे हैं। बट अगर मैं उनका डिस्कोग्राफी देखना शुरू करूं तो इट्स नॉट जस्ट कि वो बादशाह के फेवरेट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने किंग के साथ, एमसी स्क्वायर, पैराडॉक्स, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट के साथ गाने प्रोड्यूस करे हैं। तो फिर सोचने वाली बात ये है दैट हम प्रोड्यूसर पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं, बीट तो वही बना रहे हैं। उस पूरे गाने को पैकेज करना इस वे में दैट मैं और आप उसे सुनना बंद ना कर पाए, दैट इज द प्रोड्यूसर इन द हाउस एंड हितेन डिजर्व्स द बिगेस्ट स्पॉटलाइट। साल 2017 में दैट क्रिंज पॉप सॉन्ग बाय ढिंचैक पूजा, सेल्फी मैंने ले ली आज, वो इतना डाइजेस्टिबल वायरल गाना बना था बिकॉज हितेन ने उस गाने का मिक्स बनाया। वहां से लेके अब तक वो किसी एक लेन में स्टिक नहीं करे। बादशाह का गाना आवारा प्रोड्यूस किया एंड उसके बाद बादशाह की पूरी एल्बम एकता राजा इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय हितेन, जिसमें करण औजला के साथ गाने हैं, अरिजीत सिंह एंड बादशाह का सोलमेट। This gorgeous song is produced by Hiten. And what's so amusing about all of this is कि वो किसी भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, पंजाब को बिलोंग करते हैं। उन्होंने प्रोडक्शन अपने घर पे वीडियोस देख के हाउ टू मेक बीट्स एक्चुअली सर्च करके सीखना शुरू किया, लोगों को रीच आउट करके फेसबुक पे, प्रॉपर DIY प्रोड्यूसर। पर अपने करियर में वो अपना सबसे बड़ा पिवट पॉइंट ये वाला गाना मानते हैं। साल था 2021, बादशाह ने हितेन को एक इंस्टाग्राम रील भेजी एक वॉइस नोट के साथ कि यार कुछ बीट बनाना इस पे। दिस वायरल ऑडियो बचपन का प्यार जो हर जगह चल रहा था, हितेन ने 30 से 40 मिनट में पूरा ऑडियो बनाया, भेज दिया बादशाह को एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। द सॉन्ग ब्लू अप लाइक क्रेजी। सो इन अ वे इसीलिए हितेन कहीं ना कहीं बादशाह को अपना गाइड मानते हैं, मोर देन एन आर्टिस्ट जिनके साथ वो काम करते हैं। बट माई फेवरेट क्वालिटी अबाउट हितेन एज अ प्रोड्यूसर इज दैट ही लेट्स

0: the song be? वो गाने को सांस लेने देते हैं. And that's why he is the chosen producer for Badshah King. Kavnan का जो अगले वाला गाना है वो गाना भी is what it sounds like because of its producer. गाना संजू राठौड़ का है पर उसके producer हैं G Spark जिन्होंने गुलाबी साड़ी भी produce किया था संजू के साथ. हम रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए संजू राठौड़ की आवाज में G Spark की production. गाने का नाम है Bangles. 13 हफ्तों से इस Kavnan पर बरकरार. Bangles is playing right next for you on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 8.

0: Energy. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga.
1: La fiesta la burga. Milchi, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
3: मेरी बात है। अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: अरूप खान की आवाज है, गाने का नाम है गुच्ची। ऑल द हमारे दिमाग में अलग वीडियो चल रही है। दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने फरक का गाना सुना तारे। 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJ कनिका। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना गुच्ची बाय अरूप खान, जिसको एक्चुअली हम सब ने इंस्टाग्राम से ही डिस्कवर किया है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज कि गाइस, ये गाना 2020 में आया था, लेकिन 2026 में ओनली बिकॉज ऑफ रवि किशन दिस सॉन्ग फाउंड इट्स मोमेंट। वो एक इवेंट पे स्टेज पर जा रहे थे और वहां जगह नहीं थी, तो एक बहुत ही क्वर्की साइड वॉक करी रवि किशन ने। वो एडिट विद गुच्ची ऑन टॉप ऑफ इट वो हर जगह वायरल हो चुका है। एंड उस मीम की वजह से एक 6 साल पुराना गाना वापस हमारे काउंटडाउन में आ गया है। और ऐसा होता है, लाइक सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल एक गाने को, एक आर्टिस्ट को हमारे ऑर्बिट में लाके खड़ी कर देती है। एंड दैट बिकम्स अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। सारा प्रेशर उन पे है, सारी आंखें उनकी तरफ है कि क्या ये वन हिट वंडर रह जाएंगे या ये इसके बाद कुछ करेंगे। एंड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रेशर वाला जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली डोंट थिंक वन हिट वंडर इज अ बैड थिंग टू से। अगर आप उस गाने के रिस्पेक्ट में देखो तो वो गाना इतना अच्छा है कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर पाया। बट यस, ऑब्वियसली इट रेजेस क्वेश्चंस कि इसके आगे क्या होगा। आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट सवालों से गुजरे हैं। वन ऑफ द नेम्स व्हिच आई थिंक इज अ पोस्टर बॉय ऑफ इट इज एपी टिल्लो। साल था 2020, ब्राउन मुंडे वाज एवरीवेयर। अचानक उस गाने की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। एंड हर किसी का यही सवाल था कि क्या ये वन हिट वंडर है या इसके बाद ये कुछ और बना पाएंगे। एंड फिर जो हुआ, दैट्स फॉर द हिस्ट्री बुक्स, राइट? आई डोंट थिंक एपी ने किसी भी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ नए गाने रिलीज किए। इवन इफ ही वॉज बींग कॉल्ड वन हिट वंडर, तो उन्होंने वो उसको अपने फेवर में लिया और दिल नू समर हाई जैसे गाने बैक टू बैक रिलीज करे। एंड एवरी सॉन्ग जस्ट प्रूव दैट ही इज सो इन इट। एंड जनता ने भर भर के प्यार दिया उनके नए गानों को। सो यार, बीइंग कॉल्ड वन हिट वंडर इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स द प्रेशर देन बिगिंस कि इसके बाद क्या करना है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। एपी टिल्लो का हिट मोमेंट अलोंग विद गुरिंदर गिल, शिंदा कालो, जी माइनर, 2020 में आया ये गाना ब्राउन मुंडे, टिल डेट इज लाइक एन एंथम फॉर एवरीवन। ब्राउन मुंडे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: मैड वाइब, मैड सॉन्ग, गुरिंदर गिल, एपी टिल्लों, शिंदा कालो, जी माइनर का गाना, गाने का नाम है ब्राउन मुंडे. दिस वॉज अ बिगनिंग ऑफ मैनी ग्रेट थिंग्स फॉर पंजाबी म्यूजिक, जहां पे फीलिंग बहुत देसी है पर प्रोडक्शन बहुत इंटरनेशनल था. आई थिंक दैट्स समथिंग आई कैन से अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन एज वेल. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. एक फोक मेलेडी को इतनी ऊबर कूल प्रोडक्शन में पैकेज किया है. पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
7: आरके ज्वेल्स से खरीदिए डायमंड ज्वेलरी इंडिया वाले प्राइस में और पे कीजिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ओनली एट आरके ज्वेल्स इसलिन बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
12: Indie Top 10
13: Kanika ke saath
12: on Mirchi
14: number 4

0: बंजारे की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। जब भी गाना चल रहा होता है मुझे लगता है ये गाना बंद ही ना हुए। सच इज द इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो नए नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत फैमिलियर साउंड करते हैं। दैट हैज टू बी अ क्लासिक। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सानी धापा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स। गाना 1996 में आया था बाय द सेल्फ टाइटल्ड डेब्यू एल्बम कॉल्ड कलोनियल कजिन्स। दिस एल्बम वाज सच अ रेजर। दिस वेंट प्लैटिनम, ये चार्ट्स पे रहा एंड कलोनियल कजिन्स इंडी पॉप स्पेस में घर घर का नाम बन गए थे। बट व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अगर आप इन दोनों आर्टिस्ट को देखें, हरिहरन जी एंड लेस्ली लुइस, ये दोनों म्यूजिक के इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम से आते हैं, दैट मेड कलोनियल कजिन्स सो इंटरेस्टिंग एंड टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट फ्रेशेस्ट एक्ट जो हमने पॉप सीन में देखा है। एक तरफ है हरिहरन जी, अ क्लासिकल सिंगर, दूसरी तरफ वी गॉट लेस्ली लुइस हु इज ऑल अबाउट द रॉक एंड रोल। लेस्ली लुइस ने बहुत सारे वेस्टर्न प्रोडक्शन एंड साउंड से इंट्रोड्यूस करवाया एंड हरिहरन जी इज द मोस्ट ग्राउंडेड क्लासिकल वॉइस दैट वी हैड नोन। एंड इन दोनों ने मिलके जब कलोनियल कजिन से सानी धापा किया, एवरीबडी जस्ट सैट एंड आज तक भी आई एम इन ऑ। मैं जितनी बार ये गाना सुनती हूँ इट स्टिल साउंड सो फ्रेश कि बिल्कुल अभी प्रोडक्शन हुआ है इस गाने का। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस सॉन्ग इज कि ये एक बॉक्स में नहीं बैठा है, क्लासिकल एंड रॉक के फ्यूजन की जगह है एंड सानी धापा इज अ प्रूफ ऑफ दैट। कलोनियल कजिन्स का 1996 का गाना सानी धापा इज अ कैसेट क्लासिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

कहने को ये गाना 1996 में आया था, लेकिन आज 2026 में also I can say that it is one of the most experimental pop sounds out there. Hariharan ji and Leslie Lewis sir की आवाज में that was Sani Dhapa by Colonial Cousins on our cassette classic this week. At RJ Cunning on Instagram पर on, बताओ मुझे यार 90s 2000s के यही वाले गाने which still makes us feel like इंडी पॉप का गोल्डन एरा तो 90s एंड 2000s में था. Which is your favorite? मुझे आके बताओ. We might feature your song next week. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में. गाने का नाम है शीशा. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट।

0: 2000s का इंडी पॉप क्लासिक भी हमने आपके लिए प्ले किया. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप लेते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. बंजारे का बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 10.
1: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा जावेगी.
0: उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हुई बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. संजू राठौड़ का बैंग गर्ल्स 13 हफ्तों से गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक वॉज इन गाना नंबर 8. फेवरेट्स कहने तो नहीं चाहिए बट दिस सॉन्ग इज लाइक अ फेवरेट. फरक का तारे 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक, तारे वॉज इन गाना नंबर 7. अरूब खान का गुच्ची हैज मेड अ डेब्यू, एंट्री मारी है सीधा ऑन गाना नंबर 6. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी दिस वीक वाज ऑन गाना नंबर 5. बंजारे का बैरन 23 हफ्तों से गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 4.
1: रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
0: मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. इस बार वाले जो टॉप दोनों गाने हैं आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं बिकॉज काफी रीशफल हुआ है. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके हर्ष नुस्सी का गाना, गाने का नाम है साडी सुन. हर्ष नुस्सी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन. ये गाना एक पोजीशन ऊपर जंप मार के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज अ ओटीटी रिलीज. गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक. दिस इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. अ वेरी क्यूट लव स्टोरी बट अ इवन क्यूटर सॉन्ग. दरमिया डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. तो ये दोनों गाने बैक टू बैक साडी सुन नंबर 2 पे है, फिर दरमिया नंबर 1 पे, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय. नंबर 2.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है, हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
7: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: RK Jewels se khareediye diamond jewelry India wale price mein aur pay kijiye easy monthly installments mein only at RK Jewels Islip. Best quality, best price.

0: Yeah.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं
1: दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है।

0: इलाके में।
1: अरे हमारा हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
0: नहीं सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Desi khana,
7: desi shopping,
6: desi culture
7: aur desi entertainment.
6: Bas ek hi destination.
7: Indo-American Community Fair, September 12th aur 13th, Shri Krishna Mandir, Morganville.
8: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
9: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी, दीप खाओ तो जानो।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
12: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
13: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
12: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
13: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
19: इट्स 2 AM, her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
2: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
19: Wait, they can see us on Sunday?
2: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
8: On Mirchi, New Jersey, you've tuned into the Immigration Hour with the NPZ Law Group, also known as VisaServe, offering clients creative solutions to complex U.S. and Canadian immigration and nationality law issues. And joining me is NPZ Law Group founder and managing attorney, David Nockman. Namaste, David.
4: Namaste, Adab, Sat Sri Akal and Kemcho to you and to all our Radio Mirchi listeners.
8: Thank you, David. So, is it really true that green card interviews are delayed worldwide and as the State Department really retrains consular staff? Is that true?
4: Yeah, that's really true. And as Samantha previously indicated, to say the least, the summer has been a little bit of a roller coaster ride for immigration lawyers across the country. The most recent announcement, or one of the most recent announcements, I should say, although there have been many, and I think the ones that have been on the downturn of that roller coaster ride is the new executive order about the $103,000 to $165,000 fee for the H-1Bs that deals with all H-1Bs. That's going to be an interesting one.
8: Yeah.
4: And then there was also a new announcement about the I-485, which is going to be promulgated on September 18th. That's for the adjustments of status. And then I believe that it's important to remind all of our listeners about the new F1 and J1 and I rules that are going to be coming in on September 15th.
8: Mm-hmm.
4: However, that's under, you know, litigation, so we're going to see what's going to happen with that. But yes, there was an announcement recently made about an immigrant visa pause at all consulates throughout the world.
8: Yeah.
4: This does not affect adjustment of status in the U.S., and it does not affect non-immigrant visa applications or petitions at the U.S. consulates abroad. But what it was done is under the guise of a retraining that needs to take place with regard to these new adjustment of status changes that are happening, or the new affidavit of support changes that are going to be happening in mid-September. So essentially what's happened is that the slots have been pulled, and many of our listeners may have noticed that if they have slots that they previously have booked, those slots are now gone. And no replacement dates have been provided. And it's kind of interesting that this all happens on the heels of a court determination with regard to the 75 countries that the pause was placed on previously, which was sort of overruled by the court. And while the government has

0: days. Mm-hmm. Also families with relatives who are seeking immigrant visas at the the U.S. consulates abroad, they can anticipate great delays. It's going to be interesting to see what the repercussions are of this pause, because unfortunately what ends up happening is that everyone gets backed up.
1: Yeah.
0: And so we don't even know what these ripple effects are going to look like, you know. Mm-hmm. So this, you know, this disruption could be something that is a big problem. It could be something that maybe is not a problem, but this remains to be seen. It's also super interesting to see this pause happening at the beginning of the new fiscal year, because mm-hmm. what will end up happening potentially is that, and everyone knows, on October 1st, it's the beginning of the new fiscal year when new visas get dumped, you know, into the categories. So it'll be interesting to see what happens, whether we have advancements or whether everything just sort of stays, stays put. But we're hopeful, of course, that there'll be some large advancements. We remain cautiously optimistic. And of course, here at the MPZ Law Group, our team of professionals remain able, willing, and qualified to keep everyone abreast of what's going on and to help everyone to, you know, sort of navigate these disruptive times as much mm-hmm. as we possibly can.
1: Yeah, it's all up in the air right now a little bit, but the NPZ Law Group you can count on to guide you through, right? So absolutely. Thank you for that, David. Appreciate it. And of course, whether you need that green card, asylum, employment verification assistance, or help with Canadian immigration, you can always rely on the NPZ Law Group. Contact them today to discuss your immigration-related concerns. Just log on to visaserve.com or call them at 201-670-0006. And there's a discount off your consult when you mention Mirchi. More with the Legal Eagles at the NPZ Law Group, all about immigration matters. Back in a moment. Keep it right here on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
9: किसका है ये
10: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
11: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
12: फ्राइडे 11th सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
11: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
13: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Ki Jasneet nu Nihal Singh wapis pind leke aa payega?
17: Je tu Jasneet nu wapis na na leke aaya putt, to mera bhi mari da muh dekhega.
16: कि पिंड वाले जसनीत नु वापस पिंड देख पाणगे। वेखो सिंह वर्सेस कौर 2 रिलीजिंग ऑन 11 सितंबर, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल, शहनाज गिल, डायरेक्टेड बाय नवनीत सिंह, प्रोड्यूस्ड बाय गिप्पी गरेवाल, रवनीत कौर गरेवाल, श्रीकांत मोहता एंड महेंद्र सोनी।

कुछ गाने हम अकेले नहीं सुनते, उनके साथ घर के लोग, पुरानी ड्राइव्स, शादियों की मस्ती और पूरी पूरी मेमोरीज ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक ऐसी आवाज़ है जिसने हमें कई सारे ऐसे गाने दिए हैं। जी हाँ, सोनू निगम की आवाज़। यार इस आवाज़ में तो जैसे हर जनरेशन के लिए एक गाना है। किसी के लिए संदेश से आते हैं, किसी के लिए सूरज हुआ मध्यम, किसी के लिए मैं अगर कहूँ तो किसी के लिए अभी मुझ में कहीं। और शायद इसीलिए जब भी अपने फैमिली के साथ एक स्पेशल इवनिंग प्लान करनी है ना, तो सोचिए कि अटलांटिक सिटी के ग्रैंड वेन्यू में कंफर्टेबली बैठकर लाइव म्यूजिक और सामने वो आवाज जिसके गाने आप सब ने अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में सुने हैं। जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम रेवोल्यूशन टूर इस शुक्रवार सितंबर 11 हार्ड रॉक लाइव ईटस एरेना अटलांटिक सिटी में आ रहा है। अनंत सेन, अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन। तो यार कॉन्सर्ट का कैनवस तो ग्रैंड ही होने वाला है, और अगर आप अपने फैमिली के लिए प्लान बनाना चाहते हो तो जल्दी से टिकट बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर saiusainc.com या फिर sulekha.com। और मिर्ची लिसनर्स, टिकट लेने के साथ अपनी बॉलीवुड नॉलेज भी टेस्ट कर लो, क्योंकि कॉन्टेस्ट का टाइम आ चुका है। आपको बस इतना बताना है कि यार सोनू निगम ने कौन सा एक ऐसा गाना गाया था जिसमें उन्होंने 54 डिफरेंट वॉइस मॉड्यूलेशन यूज किए थे, मतलब अलग अलग आवाज खुद ही बना के 54 अलग अलग आवाज और वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करके उन्होंने ये एक गाना गाया था। DM me on Instagram RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI टाइप कीजिए सोनू और आपका जवाब, या फिर आप हमें WhatsApp पर भी अपना जवाब भेज सकते हो 9033647244। अब ऐसे गाना सुनोगे तो लगेगा पूरी सिंगर्स की बारात आ चुकी है, लेकिन माइक के पीछे से वे की आवाज थी सोनू निगम। तो चलिए रिवॉल्यूशन का काउंटडाउन कंटिन्यू करते हैं सोनू निगम के खूबसूरत गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, os cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. Na vida fala burga. Mirchi, burga.
2: हेलो मुकेश जी।
3: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
3: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
3: हाँ नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
3: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
3: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
3: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
3: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
3: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
3: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
3: है?
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
3: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
3: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
3: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
3: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया।
3: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
3: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर
3: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
3: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
4: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
3: तो जान निकाल दी हमारी।
4: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
3: कुकड़ू कु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
11: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप खाओ तो जानो।
13: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ अभी भेजता

0: टैप टैप सेंड है ना,
1: इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या यूपीआई में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.

0: आपकी मिर्ची सिद्धि, और लाइफ में हम अक्सर सोचते हैं कि वेदर बेटर हो जाएगा, मार्केट सेटल हो जाएंगे, रेट्स चेंज हो जाएंगे और फिर हम डिसीजन लेंगे। लेकिन हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है अपनी प्रिपरेशन, अपना बजट और अपने ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग। होम बाइंग में भी सवाल सिर्फ वेट करें या नहीं इसका नहीं होता, सवाल होता है आपकी सिचुएशन के लिए राइट मूव क्या है। और इसी वेटिंग वर्सेस रेडीनेस को डीकोड करने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिर्ची सिद्धि, गुड इवनिंग मिर्ची लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ गुड डे एट वर्क। वेदर इन द 80s एंड अगेन यूएस मार्केट्स फॉल एज ऑयल टॉप्स, मॉर्गेज रेट्स ऑन द राइज। Should you wait to buy a home until mortgage rates come down? That's one of the most common questions I hear from first-time home buyers. Here's the truth. Nobody knows exactly where mortgage rates will be 6 months or a year from now. And waiting for the perfect rate could mean waiting for a home that may cost more or losing the opportunity to buy the home that fits your needs today. Instead of trying to perfectly time the market, focus on what you can control. Can you comfortably afford the monthly payment? Do you have enough money for your down payment and closing cost? Is your income stable? And are you planning to stay in the home long enough for buying to make sense for you? And remember, your mortgage strategy doesn't necessarily end at closing. If rates meaningfully decline in the future and the numbers make sense, refinancing may be an option. So friends, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.5%. 20-year fixed mortgage rate, 6.375%. 15-year fixed mortgage rate, 6%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. So friends, for all your mortgage needs, whether you're buying a dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thanks. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले तीन दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
4: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
5: फ्राइडे 11th सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी।
4: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
8: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
10: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी।
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स।

0: सीधे बैंक या यूपीआई में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time।
7: दोस्तों, कभी किसी एक्टर को देख के लगता है कि यार ये एक्टर तो हर जगह है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और ओटीटी दुनिया का ना अलग ही मजा है। एक हफ्ते ये कोई एक्टर थ्रिलर में दिख जाता है तो अगले हफ्ते कॉमेडी में, और फिर किसी दूसरी सीरीज में बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर होता है। जैसे अभिषेक बैनर्जी को ही देख लीजिए, कभी एक सीरियस रोल में आपको डरा देते हैं तो कभी कॉमेडी से हंसा देते हैं, तो कभी इतना डिफरेंट कैरेक्टर निभाते हैं कि दो मिनट बाद याद आता है कि अरे ये तो वही एक्टर है। तब समझ आता है कि असली एक्टिंग ना सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता, हर बार अपनी पहचान छुपाना भी होता है और नई पहचान को अपनाना भी होता है। और कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम देखते ही लगता है कि अच्छा, इनको देख लिया अब तो कहानी में दम होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी बताइए कि ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि यार ये तो हर जगह है और अब कहानी में तो दम होने वाला है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए अब मिलते हैं ऐसे बॉलीवुड गाने से जो हर मूड में बिल्कुल नेचुरली फिट हो जाता है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: 20 मिनट्स ऑफ बैक टू बैक म्यूजिक ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 92.7 FM एंड 103.3 FM HD2, it's hot।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब

0: साथ है ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमको बताओ इंस्टाग्राम पर, आए @मिर्ची जीतू राज। समझे कि नहीं समझे, सही है
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
7: Amit Jetli of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
8: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyaar se kootti, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
5: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
4: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
5: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
4: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islip.
11: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods खाओ तो जानो।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
15: एक सूटकेस में कितने सपने फिट हो सकते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई पढ़ने या करियर के लिए दूसरे देश जाता है ना, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं लेकिन उम्मीदें ज़्यादा होती है। हर फ्लाइट एक नई बिगनिंग लेकर उड़ती है, और अगर आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अमेरिका है और हेल्थ केयर फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो एम्स एजुकेशन कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर I-20 इशू की जा सकती है। एक्सप्लोर कीजिए सर्जिकल, MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, एनेस्थीशिया और न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज के AAS डिग्री प्रोग्राम्स, और साथ ही रेपिटेड मेडिकल सेंटर्स में अनपेड क्लिनिकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है जो देते हैं रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आज ही विजिट कीजिए aimseducation.edu. एम्स एजुकेशन, स्टडी इन अमेरिका, ट्रेन इन हेल्थ केयर एंड टेक योर करियर फॉरवर्ड। और चलिए, सपनों की बातें हो रही है तो सपनों से भरा ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्यार में चमको जैसे जुगनू।
1: शाम शानदार, let's do non-donkey, have a funky time।
2: मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सलूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि

अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iscaba la puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa la murga.
1: Mirci, murga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर लिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थ केयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
7: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
6: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
8: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम, द सेम ट्रेडिशनल टेस्ट, फ्लेवर एंड फ्रेशनेस गारंटीड।
9: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour, Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
11: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
12: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
16: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
15: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
16: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
17: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
18: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
17: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
19: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
3: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन ऑफिस इज क्लोज्ड टिल मंडे, व्हाट डू वी डू?
15: डोंट
19: worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
20: Wait, they can see us on Sunday?
19: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
21: तेरा क्या होगा कालिया?
22: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
21: अब मिर्ची खा.
23: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बजता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट

0: destination. Fashion Queen.
1: Visit today. 1358 Oak Tree Road, Iselin.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
6: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनो निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
7: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ईटस अरेना अटलांटिक सिटी।
6: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com.
8: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद 0 ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
12: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
13: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
14: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
15: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
16: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
17: लिसनर एमए बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
20: कुछ गाने हम अकेले नहीं सुनते, उनके साथ घर के लोग, पुरानी ड्राइव्स, शादियों की मस्ती और पूरी पूरी मेमोरीज ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और एक ऐसी आवाज़ है जिसने हमें कई सारे ऐसे गाने दिए हैं। जी हाँ, सोनू निगम की आवाज़। यार इस आवाज़ में तो जैसे हर जनरेशन के लिए एक गाना है। किसी के लिए संदेश से आते हैं, किसी के लिए सूरज हुआ मध्यम, किसी के लिए मैं अगर कहूँ तो किसी के लिए अभी मुझ में कहीं। और शायद इसीलिए जब भी अपने फैमिली के साथ एक स्पेशल इवनिंग प्लान करनी है ना, तो सोचिए कि अटलांटिक सिटी के ग्रैंड वेन्यू में कंफर्टेबली बैठकर लाइव म्यूजिक और सामने वो आवाज जिसके गाने आप सबने अपनी अपनी जिंदगी के अलग अलग चैप्टर्स में सुने हैं। जी हाँ दोस्तों, सोनो निगम रेवोल्यूशन टूर इस शुक्रवार सितंबर 11 हार्ड रॉक लाइव ईटस एरेना अटलांटिक सिटी में आ रहा है। एंड इट्स अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन। तो यार कॉन्सर्ट का कैनवस तो ग्रैंड ही होने वाला है। और अगर आप अपने फैमिली के लिए प्लान बनाना चाहते हो तो जल्दी से टिकट बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर saiusainc.com या फिर sulekha.com। और मिर्ची लिसनर्स, टिकट लेने के साथ अपनी बॉलीवुड नॉलेज भी टेस्ट कर लो।

0: क्योंकि कॉन्टेस्ट का टाइम आ चुका है, आपको बस इतना बताना है कि यार सोनू निगम ने कौन सा एक ऐसा गाना गाया था जिसमें उन्होंने 54 डिफरेंट वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ किए थे, मतलब अलग अलग आवाज़ खुद ही बना के 54 अलग अलग आवाज़ और वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ करके उन्होंने ये एक गाना गाया था। DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI टाइप कीजिए सोनू और आपका जवाब, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपना जवाब भेज सकते हो 9033647244। अब इसे गाना सुनोगे तो लगेगा पूरी सिंगर्स की बारात आ चुकी है, लेकिन माइक के पीछे से वे की आवाज थी सोनू निगम। तो चलिए रिवॉल्यूशन का काउंटडाउन कंटिन्यू करते हैं सोनू निगम के खूबसूरत गाने के साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
4: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
5: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
4: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
5: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
4: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: Sham Shada, let's do not donkey, have a funky time.
9: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और जी हां, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिट्री सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइन सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलोडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों इतना प्यारा गाना इस एल्बम का विस्तार, यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे। तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गाय
1: नहीं दीदी, मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
0: हैं। सर क्या बात, सुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए।
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे।

0: कुकुरुकु
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पटाक। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
5: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
6: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
7: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
8: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
9: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
10: जय गुरुदेव। अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
11: 13 सप्टेम्बर रविवार
10: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Amit Jetley of Sai USA Inc. presents Sonu Nigam live in the Revolution Tour. Friday, September 11th at Hard Rock Live, Atlantic City. Book now at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
17: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेस का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
18: अब मिर्ची खा।
0: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर

रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट ज़रूर होता है, जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाडार जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: than the one I see.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
6: किसका है ये तो?
7: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
8: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
9: फ्राइडे 11 सितंबर 8:30 PM विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव ETS अरेना अटलांटिक सिटी।
8: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर एंड saiusainc.com।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
12: दिस सितंबर 12th एंड 13th जॉइन अस एट द इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर एट श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
13: एंजॉय डिलीशियस इंडियन फूड, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 AM to 7 PM.
14: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
15: क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर या गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को लेकर कोई सवाल है? तो यूनाइटेड हेल्थकेयर प्राउडली अनाउंस करता है हमारा नया एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर की ओपनिंग।
16: ये सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड है 561 US Highway 1 एडिसन विक शॉपिंग मॉल के अंदर।
15: यहाँ आपको अपने हेल्थ केयर बेनिफिट्स और कवरेज ऑप्शंस समझने के लिए पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिलेगा। हमारी प्रोफेशनल टीम आपको फ्री कंसल्टेशन देगी ताकि आप मेडिकेयर, इंडिविजुअल और फैमिली हेल्थ प्लान्स और गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स को बेहतर समझ सके। तो आज ही विजिट कीजिए एडिसन एशियन रिसोर्स सेंटर।
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
20: श्याम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
21: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। चम चंदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क की नियॉन लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना ज़बरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज की रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना

0: जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमको बताओ इंस्टाग्राम पर आए @MirchiJeeturaj। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक री रोड, इज़लिन।
6: किसका है ये तो?
7: एक आवाज जिसने रोमांस को एक नई पहचान दी, एक लेजेंड जिसकी मेलोडीज पिछले 3 दशकों से हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कती हैं।
8: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्राउडली प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन हिज बिगेस्ट टूर एवर।
9: फ्राइडे 11 सितंबर, 8:30 PM, विटनेस हिस्ट्री एट हार्ड रॉक लाइव, ETS अरेना, अटलांटिक सिटी।
8: डू नॉट मिस द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल नाइट। टिकट्स अवेलेबल एट Ticketmaster एंड saiusainc.com।
10: मोदक से लेकर लड्डू तक इस गणेश चतुर्थी हर स्वीट और स्वीट विशेष का भोग चढ़ेगा सिर्फ राजभोग के यहाँ से। राजभोग विशेष यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
17: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time।
18: श्याम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी, और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है, और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
19: या वांट टू फील दैट, कम ऑन गर्ल, बी द बीट। या दिस, चेक दिस आउट नाउ।